2.2 MHz पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

91.2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज ते कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंगे।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

feel so lonely, lonely without you, baby. I feel so lonely. नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ।

0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा
2: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
1: सुनो एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
3: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम लेकर के गुड मॉर्निंग धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी आप जानते ही है 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ रहने वाली हूँ मैं, दो घंटे अब से लेकर के 11 बजे तक आपके साथ ज्योति पठानिया, आपकी आरजे। और फिर से एक दिन और ख़त्म हो गया है, 30 मई में हम पहुंच चुके हैं। आज है शनिवार यानी कि वीकेंड।

धर्मशाला की इतनी सारी खबरें बाहर जा रही हैं कि यहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है, तो इस कारण से तो लोग अभी वीकेंड पे और भी उमड़ घुमड़ कर आएंगे, जैसे कि अभी बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। हम उनको केवल यही कहना चाहते हैं कि आइएगा ज़रूर, लेकिन जो भी प्रशासन के कायदे कानून हैं उन पर ज़रूर नज़र रखिएगा, उनको अपने दिमाग में रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो। कुछ युवा आते हैं, यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वैसे उनके पास अपनी व्हीकल नहीं होती है, वो बस में आते हैं और यहाँ से कर लेते हैं व्हीकल, कुछ किराए पे ले जाते हैं और फिर ऊपर लगाते हैं। कभी वो करेरी ट्रैक करने चले जाते हैं, कभी और किसी ट्रैक पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मौसम का भी ध्यान रखिए। अगर प्रशासन आपको इजाज़त भी दे देता है तो थोड़ा सा अपना दिमाग बरतिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो बहुत जानदार होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति से निपटने का साहस रखते हैं, लेकिन कई लोगों को खुद का पता होना चाहिए, पता होता है कि हम इस ट्रैक पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एंजॉय कीजिए धर्मशाला की वादियों को, कोई मना ही नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा कूड़े कचरे से भी परहेज कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको कहीं दिख भी रहा है पड़ा हुआ है तो भी उसमें इजाफा करने की कोशिश मत कीजिएगा।

0: श्रोताओं, करना है हमने अभी आपसे मौसम का हाल चाल बयां। लेकिन भाई, मौसम का हाल चाल तो आप खुद भी देख ही रहे हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत छुटपुट रह गया है वो मैं बता दूंगी आपको। इस गीत के बाद पहला गीत आ रहा है चलती का नाम गाड़ी, फिल्म से किशोर कुमार और मन्नाडे की आवाजें हैं।
1: बाजू बाबू।

0: तो श्रोताओं, साल 1958 की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी।
1: बातों की एक बात यही है।
0: गाड़ी ओपनिंग ट्रैक जीवन दर्शन को बेहद हल्के फुल्के अंदाज में बयान करता है।
1: बातों की एक बात यही है,
2: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।
1: टूटी फूटी सही चल जाए ठीक।
0: यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, ये सीधे तौर पर जिंदगी का नियम सिखाती है।

0: मिर्ची चला चला के झूम बाजू बाबू।
1: जैसे चलती हुई गाड़ी को ही गाड़ी माना जाता है, रुकी हुई तो कबाड़ है, वैसे ही इंसानी जिंदगी भी तब तक ही सार्थक है जब तक वो गतिशील है। रुकना या थमना ठहराव नहीं बल्कि अंत है। टूटी फूटी ही सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। अर्थ यानी जिंदगी हमेशा परफेक्ट या मखमली नहीं होती है, परिस्थितियां टूटी फूटी भी होंगी, लेकिन आपको आड़ी तिरछी राहों पर भी मुस्कुराते हुए झूमकर गाड़ी आगे बढ़ानी होगी। खास बात बताऊं आपको, इस गीत की वीडियो में दिखने वाली जो विंटेज कार है असल जिंदगी में

0: घर खजाना।
1: किशोर कुमार को विरासत में मिली थी ये उनकी पिताजी की कार थी।
2: शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या।
1: और ये गाना परिवार के जुड़ाव और वास्तविक यादों का प्रतीक है।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

जी, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, यानी कि ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है। तो बस अपनी ज़िंदगी को चलाए रखिए श्रोताओं।

और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जो किसी न किसी खास वजह से आज का अपना खास दिवस मना रहे हैं। तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो।

और श्रोताओं, अगर हम आज के मौसम की बात करें, हमारे आसपास में कैसा मौसम है आज, तो स्टूडियो के बाहर तो भाई मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल है। आज का मौसम आमतौर पर ठंडा और बादलों से घिरा ही रहेगा। दिन का तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। दिन भर हल्की बौछारें, बारिश पड़ने की संभावना भी है।

और बारिश की संभावना दिन भर 60% से लेकर के 71% तक है। दक्षिण पश्चिम दिशा से 7 से 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हवा में नमी का स्तर काफ़ी अधिक है, लगभग 72 से 78 तक बना रहेगा। यूवी इंडेक्स की बात करें तो अधिकतम 3 से 5 तक रहेगा, जो कि मध्यम स्तर पर है। आज तो अगर आप कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं या आ चुके हैं तो आप लोगों को भी ठंडी ठंडी फुहारें ज़रूर महसूस हुई होंगी और साथ ही ठंडक यहां पर बढ़ चुकी है। तो हमारे मैदानी इलाकों से जो दोस्त आते हैं उन्हें तो इस ठंड का एहसास ज़रूर होगा, यहीं पर रहने वाले बाशिंदों को बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ भाई थोड़ी बहुत ठंड हो गई है। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कहाँ हुई है ठंड, मैंने कहा मेरे तो पाँव तक जम रहे हैं और आप कह रहे हैं ठंड नहीं हुई। भाई पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई है, करेरी की तरफ भी बर्फबारी हुई, तो जब स्नोफॉल होती है ना तो ठंडक बढ़ ही जाती है। हालांकि अब ये उम्मीद हम नहीं कर रहे थे इतने दिनों की गर्मी के बाद कि जब बारिश होगी तो इस तरह की ठंडक होगी, लेकिन ये बात सही है कि जब स्नोफॉल होती है तो ठंडक बढ़ जाती है। और कल तो हमारे धौलाधार की पहाड़ियों पर भी थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई ही है।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: जी हाँ बिल्कुल, बातें कम और काम ज़्यादा ही होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि काम से जो है ना वो ही पता लगता है लोगों को कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी कैसी है। बातें करने के लिए तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
1: अरे काम से होगा नाम ज़्यादा तका।
2: अरे अरे अरे अरे अरे हर हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके।

0: और इस गीत के साथ आगे को बढ़ते हुए अब हम चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: 1189 पंचायतों में मतदान जारी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ऊना जिले में पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण को दी जा रही गति। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी।

0: चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आज चूंकि हमारी 1199 पंचायतें जो है पोल हो रहा है और उस पोल को कंडक्ट करने के लिए हमारी 615 पोलिंग पार्टीज गई हैं और इस चरण में हमारे 15,40,324 मतदाता जो है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को चुनेंगे। इससे पूर्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज में निर्वाचन हुए थे तो पहले चरण में हमारे 1293 पंचायतों में चुनाव हुआ था और उसके बाद सेकंड फेज में हमारी 1276 पंचायतों में चुनाव हुआ। थर्ड फेज में आज लोगों में काफी उत्साह है तो उम्मीद है कि आज 2021 में हमारा 78% रहा था। इसलिए दो चरणों में शांतिप्रिय चुनाव हुए और चरण में हमें पूरी आशा है कि हिमाचल प्रदेश वैसे भी शांतिप्रिय स्टेट है और चुनाव जो है वो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शांतिप्रिय ही रहेगा, पंचायतों के हैं वो शाम तक आ जाएंगे।
1: इस बीच शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नोटा स्टाम्प के साथ स्वास्तिक चिन्ह स्टाम्प इस्तेमाल होने से चुनाव स्थगित हुआ था। इस पंचायत में भी आज ही मतदान संपन्न करवाया जा रहा है। सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ जो 3:30 बजे तक चलेगा। जिले में 515 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला में आज 89 पंचायतों में मतदान किया जा रहा है। सुबह ठीक 7 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। सिरमौर जिला में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां तमाम पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं ताकि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। मतदान को लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग सुबह के समय मतदान के लिए अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: इधर सोलन जिला में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए जिला की 82 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,08,156 मतदाता हैं। इनमें 55,123 पुरुष तथा 53,033 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन के लिए कुल 490 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदान जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: जिले के तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू होते ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कल्पा विकास खंड की रोगी, तेलंगी, शुदारंग, रुबनी, मेबर, चांसू, थेमगारंग और बड़सेरी पंचायतों में मतदान जारी है। वहीं पूर्व विकास खंड की चांगो, लियो, डुबलिंग, नेसन, सुन्नम, ठंगी, आसरंग, रारंग और चारंग पंचायतों में भी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। इसके अलावा निचार विकास खंड की चौरा, करांडा, बरी, यंगपाटू, शांगो, ऊनी, पूनंग, पानवी और पौंडा पंचायतों में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: उधर कुल्लू जिला के 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चंबा जिला में भी आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महला की 17, सलूणी की 14 और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है।
4: जो हमारा तीसरा फेज है उसमें जिले के 5 ब्लॉक्स पांगी और भरमौर को छोड़ के बाकी सब जगहों पे 86 ग्राम पंचायत हैं जो तीसरे चरण में कवर की जाएंगी। मैं पुनः जिला चंबा के सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उत्साहपूर्वक आपने पहले और दूसरे चरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है उसी प्रकार से अपना सहयोग हमें दें और अपने मत का प्रयोग करके चुनाव को फ्री एंड फेयर और सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करें। तो ये सुनिश्चित करें कि हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर ऐसे लोग हों जो आपके मुद्दों को, आपके इश्यूज को और जिला के और पंचायत के विकास को अपनी प्राथमिकता बना के कार्य करें।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे

0: फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों तथा नगर निगम निगमों के लिए मतों की गणना कल 31 मई को की जाएगी। प्रदेश के 91 विकास खंडों में ये मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी कल ही की जाएगी। कुल्लू जिला के बंजार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। मतगणना कार्य को त्रुटि रहित व सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से इन महिला अधिकारियों व कर्मचारियों का पृथक रूप से विशेष पूर्वाभ्यास भी करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से देश की प्राचीन, दुर्लभ और हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। विभिन्न परिवारों, मंदिरों, मठों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों में शताब्दियों से रखी पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिक, मंदिर या निजी संग्रहकर्ता अपनी पांडुलिपियों की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊना जिले में भी इस सर्वेक्षण को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार का ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण ऊना जिला में प्रदेश कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में 75 वर्ष से या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां जो ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा अथवा कागज पर लिखित हों, उनको सूचीबद्ध करना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही। आम नागरिकों, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संचालकों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा दुर्लभ पांडुलिपियों के चित्रों को अपलोड करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि न केवल आने वाली पीढ़ियां इनसे ज्ञान अर्जित कर सके बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत संबंधी ज्ञान में इजाफा हो सके। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, अंतिम चरण का मतदान आज, 1189 पंचायतों में 17 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि, जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1189 पंचायतों में मतदान आज, आयोग का निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 जून को होगी कैबिनेट बैठक। पंजाब केसरी लिखता है, सुक्खू ने 6 जून को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक। दैनिक जागरण का कहना है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा एरियर। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, चेस्टर हिल्स मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य और केंद्र से जवाब तलब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के चुनावों के लिए 1189 पंचायतों में मतदान जारी।

श्रोताओं, तो समाचारों में आपने जान ही लिया है कि तीसरे चरण का मतदान हो रहा है आज से। केवल 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर वोट डालने आपने जाना हो तो अपना कोई ना कोई आई कार्ड साथ में और भी लेके जाना चाहिए, ऐसा बता रही हैं। मेरे साथ बैठी हैं यहाँ पर शशि, अभी अभी वोट डाल के पहुँची हैं ये, और बड़ी खुशी से मुझे अपनी उंगली दिखा रही हैं कि ये देखो, ये पक्का निशान है कि मैंने वोट डाला है। ये जो निशान है ना, ये कम से कम 1 महीना तो चलने वाला है इनका। पता चलता है श्रोताओं कि आपने वोट डाला है या नहीं डाला है, और फिर लोग आपको जज करने लग जाते हैं। भाई देखिए, आपने वोट किसी को भी देना हो, चाहे नोटा ही देना हो, लेकिन जाइएगा ज़रूर, डालिएगा ज़रूर, और यही तो अब अंतिम मौका है आपके पास। जहां पर भी, मतलब आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है, तो किसी भी बात का गिला शिकवा गुस्सा करके बिल्कुल मत बैठिएगा। वैसे भी बात हम जिंदगी की कर ही रहे हैं आज के अपने कार्यक्रम में, तो ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है। तो दोस्तों, जिंदगी क्या है? किसी के लिए एक सफर, किसी के लिए इम्तिहान, तो किसी के लिए एक खूबसूरत तोहफा।

Once Upon a Time in Mumbai, फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में भी आपने सुना। हमारी फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM, आपका पसंदीदा चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला। सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपकी आरजे ज्योति पठानिया। जिंदगी की बातें तो यूं ही चलती रहेंगी श्रोताओं। अब हम अपना रुख मोड़ लेते हैं आज की तारीख पर। इतिहास में क्या क्या हुआ था आज के दिन। आज है गोवा राज्य स्थापना दिवस। गोवा आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 25वां राज्य बन गया था आज ही की तारीख में। इससे पहले 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद ये एक केंद्र शासित प्रदेश

जलियांवाला बाग हत्याकांड के घोर विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ब्रिटिश नाइटहुड का त्याग कर दिया था 1919 में आज ही की तारीख में। पांचवें सिख गुरु और आदि ग्रंथ के संकलक गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर इसी दिन शहीद कर दिया गया था 1606 में। विश्वनाथन आनंद की पांचवी विश्व चैंपियनशिप 2012 में हुई थी। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। उन्होंने बोरिस गेलफैंड को हरा करके मॉस्को में अपना पांचवां विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता था 2012 में आज की तारीख में। और एक खास बात और भी बता देती हूँ, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा कलकत्ता यानी कि अब जो जिसे कोलकाता कहा जाता है वहां से प्रकाशित किया गया था।

जयंतियाँ भी हैं, आज ही के दिन रोज़ ही होती हैं, इतिहास में भी और कुछ जो अभी मौजूद होते हैं लोग उनकी भी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में चलेंगे एक और गीत की ओर। तो बात हो रही है ज़िंदगी की, अगर आपके साथ कोई साथ ना दे तो क्या करना चाहिए, अकेला ही चल पड़ना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जो गीत आप सोच रहे हैं ये वो गीत नहीं है, अब गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सुनिए। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है फकीरा।

श्रोताओं, जिंदगी का रास्ता लंबा है। हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही रास्ते तय करते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ हर इंसान को महसूस होता है कि अकेले चलना मुमकिन नहीं। राहें कितनी भी खूबसूरत हों, उन्हें बांटने के लिए किसी हमसफर की ज़रूरत होती ही है।

0: एक जब इंसान अकेले चलते चलते थक जाता है तो उसका ये अहंकार टूट जाता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ।
1: हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल।
0: जिंदगी में कभी कभी अपनों को पुकारना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और किसी के साथ का साथ मांगना कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और ये गीत उसी आवाज और उसी पुकार का प्रतीक है।
1: अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल।
0: पंचम दा ने इस गाने की धुन में एक अजीब सा सूनापन और गहराई पिरोई है। गाने का म्यूजिकल अरेंजमेंट भी ऐसा है जो सुनते ही इंसान को अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों, खोए हुए रिश्तों और अकेले बिताए लम्हों की याद दिला देता है।

श्रोताओ, जब जिंदगी में किसी अच्छे काम या बड़े लक्ष्य के लिए आप निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दुनिया आपका साथ दे। ये गीत इंसान को याद दिलाता है कि दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी ताकत बनना पड़ता है। ज़िंदगी का एक बड़ा सच है कि हर इंसान के पास अपना एक दुख है, लेकिन समझदारी इसी में है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल करके, बीती बातें बिसार के इंसान आगे बढ़ता रहे।

जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग। दूसरों के काम आने को ही असली जिंदगी मानी जाती है, और जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी सार्थक हो जाती है।

0: दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम बिल्कुल ही अकेले खड़े हैं। कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। ऐसे वक्त में हमारा हौसला डगमगाने लगता है। परंतु ये जो फिल्म आई फ़कीरा, उसमें रविंद्र जैन साहब ने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा लिखा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी आवाज़ पर कोई भी साथ चलने को तैयार ना हो, तब भी कदम मत रोकना।
1: का भार कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना,
0: क्योंकि अकेले चलने वाले ही अक्सर इतिहास बदलते हैं।

तो श्रोताओं, फ़कीरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

आइए अब बात कर लेते हैं आज की जन्म जयंतियों के बारे में। पंडित मुखराम शर्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1909 में, और 26 अप्रैल 2000 में वो ये फानी दुनिया छोड़ गए थे। भारतीय सिनेमा के अपने समय के एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक थे। वो मेरठ से मुंबई के माया नगरी में एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और कथा, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में फिल्म जगत में ख्याति प्राप्त की। पूरे भारत के फिल्म वितरक मुखराम शर्मा को फोन करके पूछते थे कि उनकी अगली फिल्म कौन सी है और किसके साथ बन रही है। उस समय मुखराम जी का जवाब इतना विश्वसनीय होता था कि फिल्म के सभी अधिकार रातों रात बिक जाते थे, और वितरक और निर्माता उनके घर नियमित रूप से आते थे ताकि वो जान सकें कि वे क्या लिख रहे हैं। उन्हें अपनी कहानियों को अपनी पसंद के निर्माताओं और निर्देशकों को बेचने का एक अधिकार भी प्राप्त था। अब बात करते हैं गुजराती भाषा के एक भारतीय उपन्यासकार, कथाकार, साहित्य समीक्षक, कवि, अनुवादक, संपादक और विद्वान सुरेश हरि प्रसाद जोशी जी की। उन्होंने अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ गुजराती साहित्य में आधुनिकतावादी आंदोलन का नेतृत्व किया। वो एक विपुल लेखक थे। उन्होंने साहित्य आलोचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनके उल्लेखनीय कार्यों में गृह प्रवेश, जयंती के चिन्ह पत्र, मरणातुर, चिंतायामयी मानस के लिए वो जाने जाते हैं। उनका जन्म 30 मई 1921 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारडोली जिला के वलोड में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ रहे वेलू नारायण सामी, जिन्होंने 2016 से लेकर 21 तक पुडुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। उनका भी जन्म हुआ था 30 मई 1947 को पौंडिचेरी, फ्रांसीसी भारत में, जिसे अब पुडुचेरी कहा जाता है। और एक भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं परेश रावल, जो विशेष रूप से हिंदी और कुछ तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2014 से 19 तक भारतीय संसद में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे और वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो अंदाज, अपना अपना, चाची, 420, हेरा फेरी, नायक, आंखें, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, हलचल, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध रहे। गोलमाल, भागम भाग, मालामाल, वीकली, भूल भुलैया, वेलकम, अतिथि तुम कब जाओगे और रेड्डी, ओएमजी, ओ माय गॉड, परेश ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं वेलकम बैक, धर्म संकट, पटेल की पंजाबी शादी, टाइगर जिंदा है, संजू और कुली नंबर 1। मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म 30 मई 1955 को बॉम्बे भारत में हुआ था।

तो श्रोताओं, जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त माइक के थ्रू, तो बातें तो ज़िंदगी की ही हो रही हैं, क्योंकि ज़िंदगी है इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ गीत भी आज चुन चुन करके हमने रखे हैं आपको सुनवाने के लिए भी।

समझ रहे हैं आप श्रोताओं की प्रकृति की बात यहाँ की जा रही है। प्रकृति हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ ठहरती नहीं है। जब चांद तारे और नदियाँ बिना थके सदियों से चले आ रहे हैं तो उस इंसान की समस्याओं या दुखों से घबरा कर के एक जगह कैसे बैठ सकता है इंसान। जिंदगी का सीधा सा मतलब है आगे बढ़ना।

0: जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता या मुश्किलों के आगे घुटने टेक करके रुक जाता है, वो जिंदगी के भंवर में डूब जाता है। समय की धारा इतनी तेज है कि वो बड़े से बड़े किनारे को भी बहा ले जाती है।
1: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं।
0: बिल्कुल जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती।
1: न चलेगा तो चलते भी राह।
0: अगर आज आप आलस में या किसी भी दुख में रुक गए तो रास्ते आगे निकल जाएंगे दोस्तों, और अवसर छूट जाएंगे और आप सिर्फ मंजिल को तरसते रह जाएंगे।

जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जिंदगी का स्वभाव ही निडर होना है। तूफान और मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उनके डर से रुक जाना जिंदगी का अपमान है।

दोस्तों, कई बार जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हम असफल हो जाते हैं तो हम एक कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं। किसी से बात करना हमें पसंद नहीं आता है, हमें लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है। लेकिन खिड़की के बाहर देखिए, सूरज अपनी जगह से निकल रहा है, हवाएं अपनी गति से चल रही हैं और वक्त की सुई लगातार भाग रही है। 1970 की फिल्म सफ़र में इंदिवर साहब ने मन्नाडे की आवाज़ में ज़िंदगी का एक कड़वा लेकिन सबसे ज़रूरी सच सुनाया। वो कहते हैं कि अगर एक बार आप रुक गए ना, तो रास्ते आगे निकल जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी ही तेज़ समय की है धारा। आंखें खोलिए, कदम बढ़ाइए और जीते चले जाइए।

दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब रुकने की बजाय आपने चलना चुना, और आप हमें कहाँ पर जवाब दे सकते हैं, ये आप सब भी जानते ही हैं। हमारा जो लाइव फ़ोन नंबर है उस पर आप दे सकते हैं हमें जवाब। जो श्रोता हमारा नंबर नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ, 7081170091, और ये सेगमेंट हमारा रहता है 10:30 के बाद का। तो आप हमसे कर सकते हैं लाइव बात।

श्रोताओं, बहुत प्यारा सा गीत अभी आपने सफ़र फिल्म का सुना मन्नाड़े की आवाज़ में। और आपको बता दूं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, जल्द मिलेंगे आपसे इस अंतराल के बाद। यूं ही बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, अभी जिंदगी से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें करनी है आप सभी के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने गिले शिकवे करते हैं, है ना। कभी ट्रैफिक से परेशानी, कभी वक्त की कमी, तो कभी अपनों से नाराज़गी। लेकिन सोचिए, जब ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके होने भर से दिल को गहरा सुकून मिलता है, तब हमारे होठों से क्या निकलता है। निदा फाजली साहब के शब्द हकीकत बन जाते हैं कि कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। 1980 की फिल्म आप तो ऐसे न थे से रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ सुनिए, ज़िंदगी को मुकम्मल बनाने वाला ये सदाबहार गीत।

0: मंजिल है।
1: जी हाँ, ऐसा ही होता है। सफ़र की मंजिल भी कभी कभी हमें लगता है कि मिल गई है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती ही रहती है, चाहे कितनी भी मंजिलें हम पार कर लें। जब नायक अपने प्यार की को अपने प्यार की मंजिल मिल जाती है, तब ये गाना उसकी ज़िंदगी के ठहराव और सुकून को दर्शाता है।
0: जहाँ भी जाऊँ ये लगता।
1: जब कोई ज़िंदगी में आता है तो वो केवल एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि आपकी पूरी कायनात यानी दुनिया को बदल देता है।

जिंदगी में जब तक हमें सही इंसान या सही मंजिल नहीं मिलती, हम हर चीज से शिकायत करते हैं, लेकिन किसी एक के आ जाने से जिंदगी इतनी संवर जाती है कि वक्त और दुनिया के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं।

इंसान जिंदगी भर एक खोई हुई लहर की तरह भटकता रहता है। उसे सोचने, रोकने और स्थिरता देने के लिए एक साहिल यानी किनारे की ज़रूरत होती है।

रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई इसी तरह से शामिल होगा जिसके बगैर आपको लगता होगा कि ये ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी को भी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी को भी के भी ऊपर आप इतना डिपेंडेंट मत हो जाइए कि आप अपना अस्तित्व ही भूल जाएं। क्योंकि डिपेंडेंट होना भी एक कमज़ोरी ही मानी जाती है ज़िंदगी की। और ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। पर हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अपनों का साथ भी होना चाहिए, क्योंकि अपनों के साथ के बिना भी ज़िंदगी मायने नहीं रखती है, मज़ा नहीं आता।

और श्रोता हुआ आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर बिल्कुल एक अलग ही मूड का गाना जी। आज मेरा कुछ ऐसा इरादा है कि आपको नॉन स्टॉप में गीत भी सुनवाऊं और साथ

0: उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था।
1: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
0: इसके प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे।
1: कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसा।

जी हाँ, जिंदगी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये पल में खुशी देती है और अगले ही पल उदास भी कर देती है। जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करने की बजाय इसके दोनों पहलुओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही तो जिंदगी के पहलू हैं।

0: इंसान जिंदगी भर सपने बुनता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन एक दिन वक्त का बुलावा आता है और इंसान सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है।
1: सपनों से आगे कहां जिंदगी कैसी है बहेली।
0: और यही जो बात है हमें वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की अहमियत सिखाती है दोस्तों। कभी तो

0: और श्रोताओं, हम चाहते हैं कि 10:30 के बाद आप भी हमसे जुड़ जाएं 7018-11-7091 पर, और कोशिश कीजिएगा कि आज जो बातचीत हो रही है जिंदगी के बारे में, उसी के बारे में आप भी हमसे बात करें।
1: सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले।
0: दुनिया में आकर के हम परिवार बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, मेले सजाते हैं, लेकिन अंततः ये हर इंसान को अपनी अंदरूनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये अकेलापन उदास करने वाला नहीं, बल्कि आत्मबोध कराने वाला है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली, हाय

0: तो दोस्तों, इस ज़िंदगी को आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। कभी तो ये इतनी खुशियाँ दे देती है कि पैर ज़मीन पर नहीं टिकते, और कभी एक छोटा सा गम आंखें नम कर जाता है। साल 1971 में राजेश खन्ना साहब की फिल्म आनंद आई थी, जिसमें उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और उसी फिल्म में योगेश साहब ने मन्ना डे की आवाज़ में एक सवाल पूछा था, जो आज भी हम सबके दिलों में गूंजता है।
1: कैसी है पहले?
0: बिल्कुल यही सवाल जो गीत आप इस समय सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट्स पर,
1: कभी तो हंसा
0: या यूं कहूं कि सुन चुके हैं।

श्रोताओं, हम साथ ही साथ आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात भी कर रहे हैं और इस अखबार उत्तंड मार्तंड के जो प्रकाशक थे वो संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये कलकत्ता से निकलने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर मंगलवार को छपता था। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदी भाषी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और उन्हें देश दुनिया के प्रति जागरूक करना इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था।

0: भी चलो।
1: और इसी के साथ हम अपने सारे पत्रकार बंधुओं को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, आज उन सभी का दिन है।
0: हम भी चले।
1: और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष निडरता के साथ बिल्कुल अपनी रिपोर्टिंग किया करें, पत्रकारिता किया करें, किसी के दबाव में बिल्कुल नहीं आना है।

0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जब अपने साथ होते हैं, दोस्त साथ होते हैं, या श्रोता और आरजे साथ होते हैं, यानी कि हम आपके और आप हमारे साथ होते हैं, तो रास्ता, लंबा रास्ता भी छोटा लगने लग जाता है।
1: मंजिल ना सुमा, जिंदगी है जिंदगी।
0: जी बिल्कुल, आप भी चलें और हम दो चल ही रहे हैं, तो आप हमें सुनना बिल्कुल भी ना रोकें, यूं ही सुनते रहें।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, अंधेरे और उजाले और खुशी का प्रतीक है ये पूनम यानी पूर्णिमा, जबकि अमावस अंधेरे और दुख का। जिंदगी चाहे पूनम जैसी उजली हो या अमावस्या जैसी अंधेरी, कारवां रुकना नहीं चाहिए। मौसम बदलते रहेंगे लेकिन हमारे चलने का जज्बा कभी नहीं बदलता, बदलना चाहिए।

जिंदगी श्रोता, अब इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप बने हुए हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही सुनते रहिए गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: जी श्रोताओं, तो आज है आखिरी दिन इस तिब्बतन कल्चरल फेस्ट का, तो बिल्कुल भी जाना न भूलिएगा। वैसे हम भी अभी तक जा नहीं पाए हैं और आज पक्का इरादा है कि जरूर जाएंगे, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये पहली बार ही तो होने जा रहा है इतने सालों में हमारे यहाँ। एंट्री टिकट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप आराम से जा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो अपनी बातों के साथ हम फिर से हाजिर हो गए हैं वापस रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। गए कहीं नहीं थे, थे तो हम यहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा हमने छोड़ा था कि आप महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लीजिए। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मेरे साथ मैं हूं आपकी RJ ज्योति पठानिया। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं आप सभी को कि 31 मई से पठानकोट में शुरू होगा NCC प्रशिक्षण शिविर। प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट में 31 मई से 30 जून तक NCC संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में प्री नौ सेना कैंप और ATC 2026 शामिल होंगे और इस प्रशिक्षण शिविर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से NCC कैडेट्स भाग लेंगे। शिविर का उद्देश्य है कैडेट्स को आगामी ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप 2026 के लिए तैयार करना। कैडेट्स इसमें भाग लेने वाले हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए श्रोताओं, बातों के साथ साथ आगे को बढ़ लेते हैं हम भी जिंदगी के साथ और इस वक्त के साथ। जिंदगी और वक्त दोनों हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना। और जिंदगी और तूफान इस फिल्म से गीत आ रहा है मुकेश की आवाज में।

इंसान जिंदगी से बहुत मासूम उम्मीदें रखता है, जैसे कि माँ का आंचल या फिर सच्चा प्यार, लेकिन जब वो व्यवहारिक दुनिया में कदम रखता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ हर भावना बिकती है, हर एक चीज़ बाजार बन चुकी है और ये समाज के कमर्शलाइजेशन पर करारा प्रहार है। आगे आगे सुनते चलिए गीत को बड़े ध्यान से।

कई बार ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है जब इंसान कितनी भी कोशिश करे उसकी योजनाएं नाकाम हो ही जाती हैं। और ये पंक्ति उस चरम हताशा और बेबसी को दिखाती है कि जब इंसान थक कर सीधे ज़िंदगी से ही सवाल करने लगता है कि आखिर उसका इरादा क्या है।

कवि ने समाज के उस कड़वे सच को उजागर किया है जहाँ अमीर लोग गरीबों के जज्बातों को खिलौना समझते हैं और जहाँ प्यार जैसी पवित्र चीज का भी व्यापार होना होने लग जाता है।

कहता है कि जब दुखों की इंतहा हो ही चुकी है तो फिर अब डर कैसा, ऐ जिंदगी तू मौत से ज्यादा और कर भी क्या बुरा लेगी। दोस्तों कभी कभी हम जिंदगी से थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं वो सब गलत हो रहा है। हम अपनों से प्यार की उम्मीद करते हैं, बदले में दुनिया हमें सिर्फ कड़वाहट और अकेलापन देती है।

साल 1975 में राम अवतार त्यागी ने ऐसे ही टूटे हुए दिलों की चीख को कागज पर उतारा था। जब इंसान थक जाता है तो वो सीधे ऊपर वाले से और इस जिंदगी की आंखों में आंखें डाल करके पूछ बैठता है कि भाई आखिरकार तू चाहती क्या है। और मुकेश जी की उस रूहानी आवाज में ये गीत अभी आपने सुना।

जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आदमी को यानी हमें आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर हमारा इरादा क्या है। कहते हैं ना कि जो भी कुछ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, उन अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख करके रख लेना चाहिए, रोज़ मैनिफेस्ट करना चाहिए उसको, रोज़ ये देखना चाहिए कि हाँ वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, ज़िंदगी में हो रही हैं। तो फिर हमें ज़िंदगी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि ज़िंदगी और बता तेरा इरादा क्या है।

चलिए, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और अब आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट पर एक और जिंदगी से जुड़ा ही बड़ा प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है आज। गीत को गाया है विनोद सहगल, घनश्याम वासवानी, अशोक जुनैद और जुनैद अख्तर, अशोक खोसला और जुनैद अख्तर ने।

जी हाँ बिल्कुल, आज की ताज़ा स्थिति देख रहे हैं ना आप कभी छा जाए घटा बरस जाए बेमौसम, ज़रूरी नहीं कि कल भी वैसा ही रहे जैसा आज है। समय का चक्र तो घूमता रहता है। ये गाना श्रोताओं को ये सीख दे रहा है कि न तो सुख स्थाई और न ही दुख, इसीलिए हर बदलते रंग को सहजता से स्वीकार कीजिए।

कई बार हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे सपने एक झटके में मोतियों की तरह बिखर जाते हैं दोस्तों, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है या कोई अनहोनी हो जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि बिखरने के बाद भी तो ज़िंदगी रुकती नहीं, वो अगले दिन एक नए रंग में फिर से सामने तैयार होकर खड़ी हो जाती है।

दोस्तों, हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा कि हम प्लान करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी हमारी प्लानिंग से नहीं चलती। ये तो उस कलाकार की तरह है जो रोज़ सुबह अपनी कैनवस पर एक नया रंग बिखेर देता है, और कभी वो चटक रंग और खुशनुमा होता है तो कभी थोड़ा गहरा और उदास। साल 1987 की फिल्म आज में अभी आप सुन रहे हैं यही गहरे उदास चटकीले खुशनुमा तरह तरह के रंग।

और अब सच्चाई फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में। और इसमें जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल कही गई है। जिंदगी लंबी नहीं, हमें तो खुशनुमा चाहिए। और खुशनुमा जिंदगी कैसे होगी कि अगर हमें किसी का प्यार मिले और हम भी किसी को प्यार दे सकें तो।

सादा और ज़िंदगी की बातें आपने सुन ली, और हमें आपसे शिकायत है कि आप में से किसी ने भी आज हमें कॉल नहीं किया। आगे के लिए ध्यान रखिएगा, 7018117091 है हमारे स्टूडियो का नंबर। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप कर सकते हैं 10:30 के बाद।

0: और 17 मई से मलमास का महीना भी आरंभ हो चुका है।
1: प्यार के दो चार दिन,
2: प्यार के दो चार दिन।
0: यह है कार्यक्रम का आखिरी गीत और अब इसी गीत के साथ ज्योति को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। उम्मीद करती हूँ आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और यूं ही बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक। केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ,

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और इस बदलते मौसम के साथ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। उसी तरह से हम भी आप सभी का ध्यान रखते हुए हर हफ्ते आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो यही प्रयास हमारा भी रहता है और इसी प्रयास की कोशिश में हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं जानकारियों के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ। तो सबसे खास बात कि ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ते हैं हर हफ्ते इस खास जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अपने खास मेहमान मनोवैज्ञानिक प्रियशी जी का स्वागत करते हैं हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो मैम, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़कर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही उत्साह चेहरे पे रौनक जो है देखने को मिल जाती है जी। तो अब हम हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास बातचीत लेकर आते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो अपने आप को अपनी जो है शारीरिक प्रॉब्लम हो चाहे मानसिक हो, कोई भी हो, उससे अवेयर हो सके और वो जान सके कि आखिर हमारी जो ये आसपास की जिंदगी है उससे हटकर थोड़ा सा अपना आप भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खास बातचीत का। तो मैम, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो हमारी नींद है तो वो किस तरह से हमारे लिए हमारी जिंदगी में जरूरी रहती है, क्योंकि ये जो समय है, आज का समय बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सभी का, तो ऐसे में हम अक्सर हर चीज की एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नींद को अवॉइड कर देते हैं। तो उसके बारे में हमने अपने दोस्तों से बहुत ही खास बातचीत की थी। तो थोड़ा सा एक हम छोटा सा रिकैप करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
1: जी बिल्कुल रुचिका। देखिए, नींद आज के समय पर एक लग्जरी बनता जा रहा है जबकि ये एक नेसेसिटी है। तो जब तक इंसान इस बात को अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक नींद से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में बनी रहेंगी। नींद से परेशानी होने के बाद सिर्फ नींद की परेशानी नहीं रह जाती, क्योंकि ये आने वाली कई बीमारियों को न्योता देती है
0: जी।
1: ये अपने आप में तनाव से तो जुड़ी है ही, लेकिन अगर नींद में परेशानियां आती हैं तो उसके साथ साथ और भी कई परेशानियां आती हैं, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करी जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात करी
0: जी। बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि स्लीपिंग का पैटर्न आप सभी वैसे जान चुके हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये साइकिल रहता है, क्योंकि पहले तो हम ये नॉर्मली जानते थे कि बस सोना है और उठ जाना है, बस सोना है उठ जाना है ना। और लेकिन जब आपसे बात की और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करके हमारे दोस्तों को बताया कि ये एक पैटर्न होता है जो कि एक साइकिल की तरह रिपीट होता है और पूरा ये स्लीपिंग पैटर्न हमें पूरा करना होता है
1: right.
0: और उसी कड़ी में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर की
1: जी।
0: तो दोस्तों, आज की हमारी ये खास बातचीत स्लीपिंग डिसऑर्डर की रहने वाली है। आप सभी जानने वाले हैं कि आखिर स्लीपिंग तो हमने जान ली, लेकिन ये डिसऑर्डर जो इसके साथ जुड़ गया है शब्द, इसका क्या अर्थ है, इससे हमें क्या जानने के लिए मिल सकता है और इससे हम कैसे जो है खुद को दूर रख सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर पहले तो डिसऑर्डर है क्या और ये स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है?
1: जी रुचिका, देखिए डिसऑर्डर शब्द का मतलब है कि कोई चीज जो अपने नेचुरल ऑर्डर से ऑफ बैलेंस हो चुकी हो उसको डिसऑर्डर कहेंगे। जब हम लोग मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि नॉर्मली आम तौर पे जो चीजें होती हैं अगर वो बिहेवियर्स या वो फिजिकल साइंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रिक्वेंसी आम से ज्यादा या आम से कम हो जाए तो वो बहुत ही चिंताजनक बात होती है। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन में या हमारे ऑक्यूपेशनल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में या फिर हमारे रिलेशनशिप्स में पड़ने लग जाए तो वो भी बहुत गंभीर बात होती है। और तीसरा कि स्ट्रेस की वजह से हमारा ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट आने लग जाए। और आप इन परेशानियों को जितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें वो सॉल्व ना हो पाए। आप अपने दोस्तों से बात करें पर वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लगे, आप ओवरथिंक करके उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें और वो ओवरथिंकिंग कभी खत्म ही ना हो
0: जी।
1: तो जब इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं व्यक्ति को तब ये बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करे, क्योंकि ये अपने आप में एक डिसऑर्डर का साइन होता है। सो इससे पहले बहुत देर हो जाए ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए अगर आपको इन तीन चार चीजों में से कोई भी एक पॉइंट भी लगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है, तो उसको आप बचा सकते हैं।
0: जी,
1: नाउ कमिंग टू स्लीपिंग डिसऑर्डर। देखिए, स्लीप के बारे में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी थी पिछले प्रोग्राम में।
0: जी,
1: जैसे कि स्लीप वेक साइकिल होती है और ये साइकिल हर 90 मिनट्स में रिपीट होती है। इस साइकिल के 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, NREM एंड REM। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में या तो आपकी जो फेजेस हैं, ये जो 4 फेजेस हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए, या फिर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप है या क्वालिटी ऑफ स्लीप है, उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। तो जब आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाए, तब समझ जाइए कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है।
0: तो मैम, सबसे पहले अभी आपने ये कहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में, तो इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग या क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग? तो हमारे दोस्तों को ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह से हमें फेस करना पड़ता है या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है।
1: देखिए, यहाँ पे 2 चीजें, या तो हम प्रिवेंटिव मेजर की बात कर रहे हैं या फिर हम ये समझें कि ये समस्या आ कहाँ से रही है, राइट? तो पहले समझते हैं कि समस्या आ कहाँ से रही है, जिससे कि प्रिवेंटिव हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए।
0: जी।
1: इसकी जो समस्या शुरू होती है वो कुछ यूं कि जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से इंसान एक ओवर थिंकिंग के फेज में चला जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो रात का टाइम होता है, रात के समय पे लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो एक तो जो हमारा माइंड है, माइंड भी 3 तरह के माइंड है हमारे, लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड एंड वाइज माइंड। तो रात के समय पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारा इमोशनल माइंड ज्यादा डोमिनेंट रहता है, जिसके कारणवश इंसान की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है और थॉट प्रोसेस भी, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग के कारण वो एक लूप में चला जाता है और ऐसे करके वो अपनी स्लीप को डिले करता जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज जहाँ से स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं, क्योंकि स्लीप के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए पीस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेन वेव्स के बारे में भी बात की थी। तो यानी कि जब तक व्यक्ति रिलैक्स स्टेट में ही नहीं है, यानी कि ब्रेन में अल्फा वेव ही नहीं है, तब तक इंसान थीटा वेव तक कैसे
0: पहुंच पाएगा? बिल्कुल।
1: यानी कि वो नींद में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का रिलैक्स होना, पीस में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर तनाव है और अगर ओवरथिंकिंग है तो ये प्रॉब्लम जन्म लेगी ही लेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज के समय पे कई लोगों का जो डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट का काम चलता है, जिसकी वजह से उनको अपनी स्लीप को डिले करना पड़ता है, तो वहां से भी प्रॉब्लम जन्म लेती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन सिंक विथ नेचुरल साइकिल। तो हमारी जो सर्काडियन रिदम है वो हमारे जो नेचर की एक डे टाइम साइकिल है, डे और नाइट की जो साइकिल है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, उससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम दिन को सो के रात को जग रहे हैं काम की वजह से किसी भी कारणवश, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है उस पे फर्क पड़ेगा, विच विल लीड टू फिजियोसाइकोलॉजिकल इश्यूज।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि किस तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम इस स्टेज पे जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि स्लीपिंग में जा ही नहीं सकते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस खास बातचीत के साथ। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो बहुत ही प्यारी सी आवाज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, आप सभी के मन की ओर। हमारे बहुत सारे प्रयास हैं, लेकिन एक तो सबके लिए आम बात है। तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के इस बहुत ही खास बातचीत में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर की। तो मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से एक जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल है वो प्रोसेस करता है, किस तरह से हमें उसे पूरा करना होता है, किस तरह से हमें अपनी स्लीपिंग के लिए अवेयर होना होता है। लेकिन अभी मैम ने बात की थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी। हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि किस तरह से क्वांटिटी जो है हमारी स्लीपिंग को मतलब कि स्लीपिंग डिसऑर्डर कहें या स्लीपिंग को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से ये हमारे इसमें प्रोसेस में आती है।
1: देखिए, क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पर ड्यूरेशन से। तो अगर कोई व्यक्ति है जिनका स्लीप का ड्यूरेशन कम या ज्यादा है
0: जी,
1: तो उसको स्लीप डिसऑर्डर बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक एक्सपीरियंस है ऑफ लो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप या हाई ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक रहता है यदि परसिस्टेंटली, तो वो डिसऑर्डर का फुल ब्लोन एक रूप ले लेता है। अब देखे, जो व्यक्ति जिनको नींद कम आती है या फिर बोले उनको नींद में जाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसा कहें कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है अगर वो 3 से 4 घंटे है, कम है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम सिर्फ 2 घंटे ही ढंग से नींद आई है, तो ऐसे लोगों का ये जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि कम स्लीप, कम नींद आती है इसमें। और दूसरा होता है हमारा हाइपरसोम्निया, जिसमें ज्यादा नींद आती है। तो इसमें एक्सेसिव स्लीप की डिमांड करती है बॉडी और माइंड, एंड व्यक्ति 10 से 12 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है, वो फ्रेश महसूस नहीं करता। इसीलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दिया गया, क्योंकि इतना क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेने के बाद भी व्यक्ति को वो महसूस नहीं हो रहा, वो फ्रेशनेस या रिजुविनेशन महसूस नहीं हो रही है जो उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो उसे हम इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया का मतलब कि डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं।
1: राइट।
0: तो जैसे कि अभी आपने मैम कहा कि 3 से 4 घंटे मैक्सिमम या मिनिमम है ना किसी को भी, तो कुछ जैसे वैसे तो नेचुरली हमें नींद आती है जब स्टार्टिंग में हम इस प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट थिंग्स, जैसे हम वर्किंग में आ जाते हैं, चाहे स्टडी का थोड़ा सा स्ट्रेस हो या फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का, और वो बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो शायद उसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं। कोशिश भी करते हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन फिर भी वो मतलब बातें घूम फिर के हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और जब वो सुबह का टाइम होता है ना, जैसे 3-4 बजे के आसपास का, जैसे आपने कहा कि सिर्फ सुबह थोड़े टाइम के लिए हमें नींद, मतलब मुश्किल से 2 घंटों की नींद हम पूरी कर पाते हैं अच्छे से, तो शायद वो यही टाइम रहता है खासकर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शायद। तो उसे हम एक रूटीन में लाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, तो उसे हम कैसे मतलब कि एक उसमें सर्कल में ला सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, इसमें अगेन स्लीप हाइजीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी
0: जी।
1: देखिए, रात को समय पर नींद आ सके ये एक हैबिट है, तो हैबिट को बिल्ड करना पड़ता है। तो हैबिट को आप बिल्ड कैसे करेंगे? लगातार सेम समय, सेम टाइम पर बेड पे जाने का प्रयास करें, एक ही समय पर, सेम टाइम पर डेली अपने फोन का यूज करना छोड़ दें, सेम टाइम पर खाना खाएं। कहते ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो बेसिकली आपको अपना एक रात का रूटीन बनाना पड़ेगा। रात को अच्छे से नींद आ सके इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका शरीर थका हुआ महसूस करे
0: जी,
1: क्योंकि जब शरीर थका हुआ होगा तभी वो रिलैक्सेशन की डिमांड करेगा, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत लगेगी
0: जी।
1: और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति डे टाइम में अपने रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं। आप ऐसे देखेंगे तो आमतौर पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं या फिर जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लोग सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फिर सोने का प्रयास करते हैं, सो नहीं पाते हैं और लैपटॉप चलता रहता
0: जी।
1: तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डे टाइम पर अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि लोग अक्सर शाम को, कई लोग, नॉट अक्सर बट कई लोगों को हमने देखा जो शाम को या रात को जाते हैं जिम करने।
0: बिल्कुल,
1: जो कि इट्स अ बिग नो, क्योंकि

0: को भी रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉर्टिसोल कम कर रहे हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द रियलिटी विल बी कि आप और एक्टिव फील करेंगे, एंथुजियास्टिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपलिफ्टेड हैं, तो नींद नहीं आएगी
1: जी।
0: अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो डे टाइम में। तो आप सुबह जाएं एक्सरसाइज करने और आप डे टाइम में अपना दिन अच्छे से बिताएं। शाम को आप नेचर वॉक कर सकते हैं, विच इज रिलैक्सिंग एंड कामिंग एंड ग्राउंडिंग। शाम को आप योगा कर सकते हैं, अगेन कामिंग रिलैक्सिंग
1: जी।
0: तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिनको कैफीन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कैफीन मत लें शाम को। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये बहुत मायने रखता है
1: जी। तो मैम, अभी हमने दो डिसऑर्डर की बात की है, इंसोमनिया और हाइपरसोमनिया की। तो इस डिसऑर्डर को जब हम फेस करते हैं, जैसे कि इंसोमनिया में या बहुत कम नींद आती है और हाइपर में कि एक्सेसिव में नींद आती है, तो जब हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कोई भी हमारे दोस्त या किसी भी तरह से, तो उसे दूर करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए कैसे हम क्या कर सकते?
0: देखिए, ये स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके हैं आपको।
1: जी।
0: इसके अलावा ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ देर आर थिंग्स विच दे आर डूइंग जो उनको नहीं करनी चाहिए, या देर आर थिंग्स जो उनको परेशान कर रही हैं। तो कई लोग होते हैं जो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, अल्कोहल सिगरेट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपको ओवरथिंकिंग चल रही है रात में और उस वजह से आप नहीं सो पा रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि देन स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस यूं ही नहीं हैंडल होता है। अगर हो रहा होता तो आप उस समस्या में नहीं जाते, यानी कि देर आर थिंग्स, देर आर वेज एंड स्किल्स एंड टेक्निक्स जो आपको अभी नहीं पता इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू। उसके लिए आई रिकमेंड कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, और आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, रुचिकर, स्ट्रेस के पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं जो लाइफ से रिलेटेड है
1: जी।
0: एंड स्ट्रेस या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करने के भी अपना एक प्रोसेस होता है। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, योर माइंड विल नेवर बी एट पीस, एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टेंट फाइट ऑफ थॉट्स, जिसके लिए काउंसलिंग सेशंस या फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है
1: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से हम इस डिसऑर्डर के बारे में जान सकते हैं।
0: आप अपने नॉर्मल रूटीन से कम सो पा रहे हैं, भले ही वो 4 से 5 घंटे भी क्यों ना, लेकिन आप इतना सोने के बाद, देखिए कई लोग 4 घंटे सोते हैं पर वो फ्रेश फील करते हैं
1: बिल्कुल,
0: उनका वो रूटीन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंसोम्निया है। देखिए, डिसऑर्डर का मतलब है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उससे आपको वो परेशानी, वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो यानी कि अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं जबकि आपके 7-8 घंटे सोने की आदत थी
1: जी,
0: अब आप 5 घंटे सो रहे हैं पर उसके बाद आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा, आपको टायर्ड, आपको फटीग, आपको एंग्जियसनेस फील हो रही है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवरथिंकिंग चलती जा रही है, शरीर में हमेशा थकान और शरीर हमेशा टूटा टूटा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, मोटिवेशन लैक हो रही है, तो यानी कि अल्टीमेटली फोकस क्या है? फोकस है कि जितने भी घंटे की आप नींद ले रहे हैं पर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे और आपको उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब ये तकलीफ होती है तब उसको हम डिसऑर्डर का रूप देते हैं
1: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, हर किसी के साथ ये नहीं होता, लेकिन हाँ, जब ये सारे सिम्टम्स जो मैम ने अभी बताए आपको कि आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी बॉडी में आपको डिस्टर्बेंसेस जो है फील होनी शुरू हो जाती है, तो तभी हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो यही एक्सेसिव हो चाहे कम हो, इसी तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी इस बातचीत को कार्यक्रम में आगे की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही खास बातचीत, स्लीपिंग डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जान रहे हैं कि किस तरह से स्लीपिंग हमें डिस्टर्ब करती है, किस तरह से जो है स्लीपिंग एक भयानक रूप ले लेती है, हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो यही सब जानने के लिए आप सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मैम से और बहुत कुछ जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं, जानते हैं और अपने आप को अवेयर करते हैं। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कम नींद आती है तब भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, या सबसे बहुत ज्यादा ही नींद हम ले लेते हैं तब भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, या हम उतनी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि जब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हर किसी के साथ कोई साथ में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग अकेले भी रहते, बुजुर्ग की हम बात करें तो उस तरीके से जब उन्हें बहुत गहरी नींद में जब दबाव मतलब एक तरह से महसूस होता है, जब उन्हें बहुत एक भयंकर सा सपना वो देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि कोई हमें मार रहा है या कोई हमें हर्ट कर रहा है, तो इस एक्सपीरियंस को हम स्लीपिंग डिसऑर्डर में लेंगे या किस तरह से इसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? मतलब
1: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने REM स्लीप में होता है, यानी कि जो लास्ट फेज ऑफ स्लीप है, उसमें हमारा जो बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो अल्टीमेटली हमारे नेक के नीचे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस को शट डाउन कर देता है, यानी कि वी कैन नॉट मूव आर बॉडी, जिसकी वजह से अगर उस फेज के दौरान हमारी आंख खुल जाए या हम अवेयरनेस में आ जाए, क्योंकि ये एक लास्ट फेज होता है, तो रिमेम्बर स्लीप वेक का एक साइकिल है जो रिपीट होता है 90 मिनट्स में। तो REM फेज के जस्ट बाद NREM का फर्स्ट फेज आ जाता है, जिसमें डेल्टा वेव से शिफ्ट आता है अल्फा वेव एंड थीटा वेव में। तो अगर अल्फा वेव आ गई तब जब REM फेज खत्म ही नहीं हुआ, ऐसे में व्यक्ति जग जाता है, यानी उसकी आंख खुल जाती है, पर क्योंकि उसके अंदर डेल्टा ब्रेन वेव भी प्रेजेंट है तो वो जो सपना देख रहा था वो कंटिन्यूड रहता है। ऐसे में कई लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। तो स्लीप में बेसिकली बोला जाता है कि जो भी सपना हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वो हेलुसिनेशंस ही होते हैं, क्योंकि वो हम आंख बंद करके हेलुसिनेट कर रहे हैं, बिकॉज सपना एकदम सच लगता है जो कि रियल नहीं होता, इसीलिए उसको हेलुसिनेशन
0: जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जब हमें वो सपना मतलब कि देख रहे होते हैं हम, और जैसे लग रहा होता है कि कोई हमें मार, और हम रियल में ना चिल्ला रहे होते हैं,
1: डेफिनेटली
0: नींद में ही हम ना ऐसे मतलब कि जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, और जब तक कोई दूसरा पर्सन उन्हें उठाता नहीं है तो तब तक वो उसी एक पोशर में और उसी दर्द में जो है चिल्लाते रहते हैं।
1: राइट। तो इसमें देखिए, स्लीप पैरालिसिस में जो एक शिफ्ट आता है साइकिल का, ये उसमें डिसऑर्डर आ गया, वो ऑफ बैलेंस चला गया, ब्रेन वेव जिस समय पर जब होनी चाहिए थी तब की जगह वो पहले आ गई। तो अब जब व्यक्ति उठा है पर उसका नेक के नीचे के वॉलंटरी फंक्शंस तो अभी शट डाउन है ना, और सपना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जो सपना देख रहे थे वहां का कोई कैरेक्टर या वहां की सिचुएशन रियल है। समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो विटनेस एंड सी समवन स्टैंडिंग क्लोज टू देम, या फिर कई बार उनको लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है ये एक्सपीरियंस कि ये व्यक्ति में बहुत एंजाइटी क्रिएट कर देता है, डर क्रिएट कर देता है। और एंजाइटी का मतलब होता है अननोन फियर, तो यानी कि डर किससे लग रहा है इंसान को ये भी नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता।
1: तो अननोन या अनसर्टेनिटी इंसान के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग होती है, और क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा है, सो पर्सन फील सो हेल्पलेस कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है ये और ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट इंसान ऐसी ही स्टेट में रहता है जो कि बहुत टॉर्मेंटिंग उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को इस समय समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है,
1: और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता तो इसलिए उनको लगता है कि कोई भूत की प्रेजेंस है या इस घर में कोई अच्छी एनर्जी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो लोग अक्सर इस जो भी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती ना रुचिका, लोग उसको भूत से जोड़ देते हैं, क्योंकि भूत भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी लोगों ने बना रखी है कि उनको नहीं पता कि वो खुद क्या है, तो इसलिए हर वो चीज जो समझ में नहीं आती वो भूत से लिंक हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप सबका ये जानना और समझना कि कैसे स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्योरली साइंटिफिक कॉजेस की वजह से हो रहे हैं।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से हम
1: ये
0: इसे
1: देखिए डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्ट्रेस से जो भी तनाव है, क्योंकि देखिए स्लीप इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल दैट हैज टू अकर, जिसकी वजह से अगर कोई भी नेचुरल चीज डिस्टर्ब है तो मतलब देर इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। हमारा ड्रीम, जो भी हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आता है, जिसकी थ्रू हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कम्युनिकेट करता है कि देर आर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, पर हम अपने माइंड को उसकी आवाज को दबाना और उससे एस्केप करना या उसको अवॉइड करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विच इज सो रॉन्ग एंड सो अनहेल्दी फॉर ईच वन ऑफ अस, बट येट ड्यू टू अनअवेयरनेस वी टेंड टू डू इट, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती ही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जो भी स्ट्रेस है या जो इमोशनल सप्रेशन है उसको ना करके, उसको छोड़ के अपने स्ट्रेस को एड्रेस करना जरूरी है, अपने इमोशनल सप्रेशन की जगह उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लाइफ में उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। जैसे जैसे वो चीजें रिजॉल्व होंगी वैसे वैसे स्लीप की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहेंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब तक आपके माइंड में वो बातें चलती रहेंगी, जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि मैम ने कहा सबसे पहले तो हमें ये बहुत जरूरी है जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एड्रेस करना, स्ट्रेस है उसे भी अच्छे से जानने की किस तरह से क्यों और क्या रीजंस है, क्योंकि जब तक हम इससे फेस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो तब तक वो हमें परेशान करते ही रहेंगे और ये फिर स्लीपिंग का जो डिस्टर्बेंस है वो हमें हर टाइम जो है वो फेस करना, तो और कहीं ना कहीं फिर बीमारियां, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है तो वो बस नींद ही डिस्टर्ब होगी, नींद ही नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां जो है फिर
1: वो हमें भी आएंगी। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करेगा, आप सही जजमेंट्स नहीं ले पाएंगे, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इन सबकी वजह से इंसान फिर और परेशान ही होता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका कॉन्फिडेंस होने लगता है, उसकी जॉब में परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ जाता है, रिश्तों पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है,
0: चिड़चिड़ा बिल्कुल,
1: मूड इम्पैक्ट होता है। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वन अनदर कि स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: जो कि आज के समय में बहुत ही कम है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चों में तो खास करके ही बहुत ही कमी देखने को मिल रही है कि वो अक्सर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैम बच्चों को हम क्या रीजंस दे सकते हैं, मतलब बच्चों को जो नींद पूरी नहीं हो पाती है?
1: देखिए बच्चों के लिए तो आज के समय पे सबसे बड़ा कारण है उनका फोन और उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल। जैसे जैसे एक पेरेंट अपने छोटे बच्चे को रूटीन में डालेंगे ना, वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि एवरी बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। आप बच्चे को सिखा सकते हो और बच्चा, क्योंकि बच्चा इज लाइक अ मोल्ड, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, यू नो, वो एक सॉइल की तरह होता है, वो एक मिट्टी की तरह है, आपके ऊपर है ये कि आप उसको कैसे किस तरह का एनवायरनमेंट और किस तरह का लाइफस्टाइल में उसको ढालना चाहते हो।
0: जी, और मैम एक बात मैं यहाँ पे ये भी बताना मतलब कि जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के अगर अभी हमने फोन की बात की है तो वो तो हमें पता है कि एक फोन की एडिक्शन बच्चों के लिए बहुत ही गलत है, जो फोन वो रात भर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई का नाम दे रहे हैं तो कई बार बच्चे लैपटॉप जो है काफी लेट नाइट तक यूज करते हैं, फोन भी यूज करते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, क्या उससे भी स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए हर चीज हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है, अगर हम गलत टाइम पर सही चीज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाएगा।
0: सही हो सकती है, बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर वो फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गलत है। लेकिन अगर वो उसी समय जो है लेट नाइट तक, चाहे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी, 2-2 बजे, कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि 2-2 बजे तक सोते नहीं है, वो 2 बजे सोना है उन्होंने, तो वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं या फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं।
1: देखिए, पेरेंट्स में ना एक बहुत स्ट्रांग सोच ये रहती है कि अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, हम उसको मेहनत से नहीं रोकेंगे
0: जी।
1: क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन अगर आप इस आज के टाइम के दौर पे अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के साथ चीजों को देखें और समझें, तो आप ये समझिए कि व्हाट आर यू पुटिंग एट कॉस्ट, यानी कि आप बच्चे की नींद पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि नींद के दौरान हर व्यक्ति में उनकी ब्रेन सेल्स रिजुविनेट होती हैं। हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रीडेवलप होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तभी बच्चे को चीजें याद भी रहेंगी। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी कर रहा है, उसको चीजें याद भी नहीं रहने वाली हैं
0: जी।
1: और फिर उस चीज को याद रखने के लिए लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं रुचिका,
0: बिल्कुल,
1: और फिर पेरेंट्स के लिए वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज पेरेंट्स आप ये मत सोचिए कि बच्चा रात को पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आप ये सोचिए कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो काम बच्चे के लिए उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और जो नेचुरल चीजें हैं वो कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। अब इसमें क्या ही फायदा है कि बच्चे ने 2 साल या 3 साल 4 साल मेहनत करी, फिर वो कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज में जाने के बाद अब जब उसको नींद नहीं आती है तो वो रात में फोन चलाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और फिर वो सब्सटेंस लेकर अपनी नींद पूरी करता है, या सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा पाता है, या फिर अपने यूथ में ही वो इतना फटीक फील करने लगता है कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो इससे एज पेरेंट्स आपने क्या ही अचीव कर लिया। पर आप सोचिए, अगर आपका बच्चा 5-10% कम नंबर ले भी आए यदि, बट उसका जो एक रूटीन है या उसकी जो एक गुड हेल्थ है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बुरी आदतों से भी दूर रहेगा। सो व्हाट वुड यू प्रिफर। तो हम तो यही बोलेंगे एज पेरेंट्स को कि आप ये मत सोचिए कि एकदम से बच्चा एकेडमिकली पीक ले ले और उसकी मेंटल हेल्थ से अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो करे, क्योंकि उसके बाद मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद वो उसके रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन
0: जी।
1: सो यू हैव टू थिंक कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशन लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रही थी और आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि अक्सर हम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स को वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, 2 दिन लगाकर हमने पढ़ाई कर ली और 1 मंथ लगाकर हमने बिस्तर पकड़ लिया, तो Definitely. उसका फिर क्या ही फायदा रहेगा।
1: या
0: तो,
1: फिर पढ़ लिया इतना और एग्जाम टाइम पे जाके ब्लैकआउट हो गया, अब याद ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा भी होता है बच्चों के साथ बहुत।
0: जी जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए और एक रूटीन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में अपने शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है और एक समय है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से गीत के बाद।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस बहुत ही गंभीर सी और खास बातचीत के साथ। तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी भी इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं मैम से और बहुत सारी जानकारियां स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैम, अभी आपने बात की स्लीपिंग पैरालिसिस की, तो वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नींद में, जब गहरी नींद में होते हैं या जैसे भी है, हम कहीं खो जाते हैं नींद नींद में, तो हम कई बार ना रोने लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे इस मतलब कि डिसऑर्डर के साथ या स्लीपिंग के साथ? किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या ये क्यों होता है हमारे साथ?
1: देखिए, आप जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, इसमें अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई सपना देख रहे होते हैं और उनको वो इतना रियल लगता है कि फिर वो अचानक से जब उठते हैं तो उनको वो एंग्जियसनेस रहती है, उनको वो घबराहट, वो डर रहता है जो भी उन्होंने सपने में देखा होता है, और फिर उनको अचानक से रोना आ जाता है। तो बेसिकली, और ऐसा भी होता है कि असली में, मतलब सपने में भी रोए और असली में भी रोने लगते हैं, और फिर आँख खुलती है और इंसान जो है वो बहुत घबराया हुआ होता है, दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं। तो ये जो होता है, ये थोड़ा स्लीप पैरालिसिस से थोड़ा हटके होता है, इसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। तो ये नाइटमेयर डिसऑर्डर है। नाइटमेयर्स में बेसिकली जो हमारे सपने होते हैं वो इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि वो हमारा जो कोई भी पास्ट में वूंड रहा है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें बार बार आता है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है विद PTSD, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। जो लोग अपने पास्ट में एक बहुत स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ, लाइक नाइटमेयर थोड़ा अलग है देन स्लीप पैरालिसिस, बट यस, दोनों में ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है।
0: जी बिल्कुल, तो ये भी हमारी स्लीपिंग का पार्ट है। तो अक्सर जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स हम में आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी नींद का, हमें वही फॉलो करना चाहिए, जो क्योंकि एक बार हमने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलती रहती है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि चाहे आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, क्योंकि नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर वे में लेना, जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है, उसे पूरा होने के लिए समय लगता है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो उसी तरह से नींद भी उतनी ही जरूरी है। फिर हमें डार्क सर्कल आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं क्या लगाएं, क्योंकि हमारे फेस का थोड़ा सा वो फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं हम देखने में, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर फिर अपनाने शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस स्टेज तक जाएं ही ना,
1: बिल्कुल
0: है ना, पहले ही सतर्क हो जाए।
1: Exactly, आप प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व करें, उसकी गहराई को समझे, और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, नींद एक लग्जरी बनते जा रहा है, तो लग्जरी नहीं, वो नेसेसिटी है, इस बात को समझें और अपने जीवन में अच्छे से नींद को प्रायोरिटी दें।
0: जी बिल्कुल। पर दोस्तों, एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग, नींद कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा शब्द है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको इतनी जल्दी जल्दी में तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट जो है हम जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन आज की इस हमारी खास बातचीत से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, और अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर, हमारे मनोवैज्ञानिक मैम है, तो आप इनके साथ जो है जुड़ सकते हैं, और अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की, काउंसलिंग सेशन की, तो जरूर दोस्तों बिना हिचकिचाहट जो है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी तक नहीं पहुंचाई जाती, तो पूरा आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, पहल आपको करनी होगी, अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना होगा। तो हमारे सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, धर्मशाला, और फोन नंबर है 9354134057। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी तक नंबर भी पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी पहुंच चुका है। तो देर किस बात की है, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है तो फटाफट से फोन उठाइए, डायल कीजिए और बात कीजिए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। और अगर सवाल है जो हमें बात करनी चाहिए आप सभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक या और लोगों तक आप चाहते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारी जो है इस पे यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एडिशन करनी चाहिए या किस तरह से हमें बातचीत और इसमें एड ऑन करनी चाहिए। तो फिलहाल समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने एंजॉय की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी के साथ फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा

मंत्री दिलन येसिल्गो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने तन की।

291 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी इंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने तन की।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

कानी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशो तो पहले तो हाँ सार यदा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो हाँ सारे ही ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा काम कार है से जरूर करा दे उन्हें न। इसी कन्नै जेड़ा तुहंदा कार्यक्रम दा समय रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक कन्नै तुहां सारे जो भी इंतजार रहिंदा है कि कालू दिया 2 बजदे न कन्नै कालू दिया हाँ इस कार्यक्रम दे सफर कन्नै जुड़दे न। तां सफर दी शुरुआत अहां करदे न इस प्यारे दे गीत कन्नै। तो तुहां सारे भी सुना कन्नै सुनदे रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: એ તો હા સારે દાપના રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તો હા સારે સુન્યા એ પ્યારા દે આ ગીત પ્યારી દે શરૂઆત તાશો તો જિંદગી દા સબસે બડા સચ ક્યોંકિ જિંદગી દા જેડા સફર હૈ ના સે હા વાસ્તે કુછ ખાસ હૈ ખાસ તો બનતા હૈ ના હા હમેશા અપની જિંદગી ચ જેડા સે ભાગ દોડ કરતે ન એક દિન હા સબ કુછ જેડા સે ખોઈ દેણા હૈ ते तो हाँ सारे जो ही पता है ना हाँ जो पैसा याद रहना है ना हाँ जो खूबसूरती जड़ा से हाँ दी याद रहनी है सिर्फ इंसान दियाँ जड़ा यादा न से हमेशा तिस करने रहनिया न तो जिंदगी दा जड़ा सफ़र है अगर हाँ जिंदगी दे सफ़र च या अपनी जिंदगी च अच्छी जड़ा छाप है से छड़ी करी जाते न तो कुछ ना कुछ ये छाप ही यहाँ जो अगे तक यहाँ दी याद जड़ा से जरूर करांदी है। अगर गल हाँ कर जिंदगी एक पेंसिल है पेंसिल जड़ा से हाँ वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है अगर हाँ हर दिन अपने किताब दे जड़ा पन्ने न तिना जो पलट देन या तिना जो पढ़ देन ता हर दिन हाँ वास्ते जिंदगी जड़ा एक नया दौर जड़ा से जरूर ले करी आती है पर हमेशा हाँ जो इस जिंदगी दे सफ़र जो एक खूबसूरती कन्ने जीना चाहिदा ता तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र कन्ने जुड़ी सकदे कन्ने हाँ कन्ने गल बात जड़ा से जरूर करी सकदे दर्शो तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है पहले तो हाँ सारे ही इस नंबर जो नोट करा फिर ही इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा नंबर मुझे लगा था तो हाँ सारे ही लिखना जड़ा से शुरू होई होने न लिखना तो बनता है या मोबाइल फोन च डायल करना तो बनता है नंबर है 701-811-7091 नंबर तो हाँ तक पहुँचाईता है कने पहले जड़ा श्रोता न से हाँ करने जुड़ चुके हो न कर दें तिना करने गल बात हेलो हेलो नमस्ते जी स्वागत है जी तोहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी मैडम बढ़िया
0: जी तोहां कुथू ते बोला दी कने तोहां दा नाम की है जी
1: मैं अशोक कुमार बोला जी सुन लंदे
0: जी अशोक जी क्या काम कार तोहां लगया क्या करा दे आज
1: आज करे के मैडम छुट्टी नहीं कर
0: जी क्या करा दे
1: जा रहे हैं ना
0: जी अच्छा घरे दे काम जिड़ा न आज से करा दे तो हाँ
1: रोटी खाई
0: जी जी चलो
1: सब में जाएंगे आज सा
0: जी जी
1: यार मौसम खराब था
0: जी मौसम थोड़ा दिया खराब होंदा था सारे यहाँ दे जिड़ा काम मन से रुकी आंदे ना जी क्योंकि मौसम दे अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है ना जी जी ता अशोक जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: जिंदगी सोनी है
0: जी अच्छा गीत तो हाँ सुनना है जिंदगी सोनी है जी ता जिंदगी सोनी है तो तुम्हें क्या लगता कितनी की यहाँ दी जिंदगी सोनी है यहाँ कितना की अपनी जड़ा जिंदगी दा सफर है उस जो अच्छे करने बिता देना या किस तरह हाँ

0: अपनी जिंदगी का जेड़ा सफर है उस जो कट्टा दे
1: जिंदगी है, मैंने कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है।
0: जी
1: कल मर जाना, कल नहीं पड़ जाए, पूरी बड़ाई करी चलो, अपना काम करी चलूंगा।
0: जी जी मतलब जेड़ा आने वाला पल है उसका जेड़ा हाँ भरोसा ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते ना जी। जी तो तुहां क्या जेड़ा बाकी श्रोता तक अपने विचार पहुंचाना चाहेंगे कि जिंदगी जेड़ा ऐसे यहाँ जो एक बार मिलती है ना जी। जी जी हर दिन नया जेड़ा सुबह ऐसे यहाँ जो मिलती है ना। जी जी तो जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है जिंदगी सोनी है एगी तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा। जी अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: धन्यवाद मैडम जी, ठीक ठाक असा जी मैडम जी। तुसा मैडम जी ठीक ठाक ना?
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नां क्या है जी?
2: सुनील कुमार कोठियां जलोट दे बोले मैडम जी।
0: जी कोठियां जलोट आलियां दे क्या हाल चाल है, मौसम किस प्रकार है उस साइड?
2: राती तो बरखा हुई पिया गा, ठीक बरखा हुई मैडम जी, मैंने थोड़ा दुबले ही पई है मैडम जी, बदलोखी थोड़ी
0: जी। अच्छा इस टाइम जड़ा से थोड़ी बदलोखी धूप जड़ा से लगी पी
2: हो जी। हाँ जी मैडम जी।
0: जी और क्या काम कार छेड़े तो? हाँ
2: कुछ नहीं मैडम जी, बैठे तो उनके प्रोग्राम
0: जी, सुना कोई काम कार नहीं?
2: नहीं मैडम जी।
0: जी
2: ता मुझे तो काम होता नहीं मैडम कुछ तो।
0: अच्छा जी।
2: हाँ जी मैडम
0: जी, रेडियो ने जड़ा से मन लगाया तो है ना जी?
2: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो रेडियो सुनी करी कदिया जड़ा एहसास ऐसे तो हाँ जो होंदा, क्योंकि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी ना जी।
2: हाँ जी मैडम।
0: पर आज कने टाइम च भी तो हाँ आज कने दौर दी यहाँ गाल करिए कि हर जगह मोबाइल फोन है या सोशल मीडिया है, तो रेडियो सुनना तो आज कने युवा पीढ़ी ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना जी।
2: हाँ जी मैडम जी, सही गाल बोली मैडम जी।
0: जी
2: जी,
0: जी यहाँ कुछ से भी पूछते हैं ना तो सही बोलते हैं ना कि आज कने टाइम च कुल रेडियो सुनता, पर हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी ना जी।
2: अपनी अपनी पसंद है मैडम, अपनी अपनी सोच है कने।
0: जी अपनी अपनी सोच है
2: जितना समय मैडम जी रोल रेडियो ना काम भी कर दे रहे हैं, एक ही बखे रखी दिया सी बस काम कर दे रहे हैं, मजे ने सुन दे रहे हैं, टीवी ये देखिए ता काम भी बजी आंदे मैडम जी।
0: जी तिदा यही होंदा कि एक ही जगह हां जो बैठी करी दिखना पोंदा ना जी।
2: हां जी हां जी मैडम जी।
0: रेडियो दा ये है कि आवाज ने माध्यम ने ही तोहां जानकारियां भी जेड़े से सुनदे, गीत संगीत भी सुनदे, अपनी पसंद दा जेड़ा गीत है सभी सुनी पांदे ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी आज तुम कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके?
2: एक मैडम जी पुराना गीत है, मतलब पुरानी याद है, चलो तारा ताजा करी लेंदी गाने माध्यम से।
0: जी जी
2: जरूर। गाना मैडम जी,
0: जी।
2: एक गाना मैडम जी करनैल राणा दी आवाज च
0: जी करे दियां बियां।
2: हाँ जी करे दियां दीवारा वो लगी हो गई, कचियां दीवारा वो लगी हो गई।
0: जी जी जी जरूर।
2: बड़ा अच्छा गाना मैडम जी, बहुत बचपन का गाना मैडम जी, बहुत अच्छा गाना गाया कने
0: जी,
2: सही गाना मैडम जी।
0: एक गाने दे एक एक बोल जेड़ा ऐसे यहां जो समझाई करी जांदे ना जी।
2: हां जी हां जी मैडम जी, दस्या कि मतलब कियां कियां खीरे खाने खेतां च गरने खाने मैडम जी, उन कुछ ही खवाने उन माड़मा
0: जी, उन से दूरी नहीं है प्यार
2: भाव दूरी नहीं है उन तो जमाना में तो बीबी वो शुगर बद्दी हो गए है ठीक ही गलाए गाने माध्यम दे मैडम जी।
0: जी तो बीपी शुगर तो बदना ही है ना, क्योंकि ज्यादातर हाँ फास्ट फ्रूट दी तरफ अपना ध्यान देंदे, जेड़ा हंदी नेचुरल सब्जी है वह जो खाना पसंद नहीं, हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है। अगर
2: घर च
0: पांच सदस्य ना तो कई जो भिंडी पसंद नहीं है, कई जो लस्याड़े जिन्हें सीजन चलिया था सह पसंद नहीं है ना, हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है।
2: हाँ जी हाँ जी मैडम, पहले का टाइम था ना मैडम जी, चल चाय ने रोटी मिलती चाय ने भी खाई लेंदे हैं मैडम जी, लूने ने मिली तो लूने ने भी खाई लेंदे हैं
0: जी,
2: तो हूं तो गाँवी जनरेशन लूने ने एक नहीं खानी, ये भिंडी नहीं खानी वो नहीं खाना।
0: जी चलो थोड़ा जहा से टाइम बेशक हां जागरूक नहीं थे, हूं जागरूक है पर कुछ ना कुछ जागरूकता कैस कमे दी, जालू हां दी सेहत ठीक नहीं है, अपने अच प्यार भावना नहीं है ना जी।
2: हाँ जी मैं आजकल मैडम जितना खा दे ना उतनी सेहत नहीं बने, पहले के मैडम चाय ने भी रोटी खाते ने, चाय ने भी खाते मतलब रोटी भी ठीक रहती है मैडम जी।
0: जी
2: जी
0: जी जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा।
2: धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते मैडम जी।
0: जी दर्शो तो बरदिन अपने कार्यक्रम दे सफर च अगे कने सुनदे न इसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।
3: कदे हाँ।

तशु तो जिंदगी जिंदगी दे बारे जहाँ हमेशा गलबात जड़े से करते ने, जिंदगी जड़े से एक पेंसिल दी तरह है। उन तो हाँ सोचा दे उन्हें कि पेंसिल दी तरह किन्ने है, क्योंकि हर दिन पेंसिल जड़े से छोटी होंगी जाती है। हाँ, जितना जड़े से पेंसिल कने लिखते उतना ही जड़ा हाँ शोप करते न, तो पेंसिल जड़े से अहाँ दी जिंदगी दी तरह है। तो जिंदगी जो अहाँ किस प्रकार सफल या खुशियाँ करने जींद न, से यहाँ पर निर्भर करता है। तो तुम सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने, तुम सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते, कने अपनिया जड़ा पुरानिया यादा न तिना जो जरूर जड़े से ताज़ा करी सकते। ताज़ा करने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तुहां नोट करा, नंबर है 701-811-709-1। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। ताशु तो पहले इस गीत जो सुन दे ना, फिर तुह जो सब कुछ याद आ जाना है, फिर तुह जल्दी जल्दी कॉल करा, कने अपनिया जड़ा याद आना तिना जो जरूर ताज़ा करा।

0: कानवी दशमलव 2 MHz पर यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, कने जरूर तुहां इस गीत कने अपनिया जेड़ा यादा न से जरूर ताजा करी लिया होनिया न। दर्शो तो इस गीते दे जेड़ा बोल थे से बड़े प्यारे थे, कने ये रिश्ता हाँ जो या रिश्ते दी गल करिए या परिवार दी गल करिए या अपनिया जेड़ा यादा न तिना दी गल करिए, बार बार अह जो तिना दी जेड़ा याद है से जरूर दिलांदा है गीत। कने अह दा जेड़ा बचपन है से किस प्रकार गुजरिया था तिसदा भी अह जो जिक्र जेड़ा है से जरूर ये गीत करवांदा है। इस गीत की फरमाइश अह तक आई थी कोठियां जलोड़ ते, कने तिना दा नाम है सुनील जी। सुनील जी तक कहाँ ये गीत पहुँचाया, कने तिना भी जरूर अपनिया जेड़ा पुरानिया यादा न से ताजा कितिया होनिया न। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे, कने तुहंदा नाम की है जी?
1: मैं कुल्लू से बोला था जी, मेरा नाम अशोक
0: जी। कुल्लू ते बोला दे अशोक जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता अशोक जी कुल्लू वाले दे क्या हाल चाल है?
1: अस जी बढ़िया जी, इलेक्शन लगे हुए आज
0: जी। अच्छा आज है तो हिंदी साइड भी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। चलो अच्छी गल है जी
1: जी
0: जी। ता मौसम कदे है कुल्लू दा?
1: कुल्लू दा मौसम जी बदल ही आज
0: जी।
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी
0: जी जी। ता बरखा हुई उस साइड भी ज्यादा की थोड़ी हुई?
1: नहीं बरखा नहीं हुई यार, बदल ही है
0: जी। अच्छा बदल ही है मतलब बरखा नहीं हुई?
1: नहीं जी
0: जी। कने अगर हाँ ये धर्मशाला दी या ये इथू दी गल करन ते इथू दा मौसम थोड़ा ठंडा हुई है ना जी, हुन बरखा हुई
1: है
0: जी जी जी। ता अशोक जी कदिया लगा था तो हम जो एक कार्यक्रम
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया
0: जी। ता तो हम भी अपनी पुरानिया यादा जरूर ताजा करी सकते जी
1: जी जी।
0: ता तो है क्या लगता जेड़ा हंदा बचपन है से किस प्रकार यादा ने संजोई करी रखया तो हां? जी बड़ा बढ़िया है ना जी बचपन। बचपन दी गाली निराली है
1: जी।
0: पर आज कनी दौर दी यहां गाल कर

0: तो कुछ ना कुछ ये चीज हाँ जो कम दिखने जो मिला थी ना जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: बच्चे ज्यादातर अपना उसमें मोबाइल फोन जो दे दे या एक ही जगह बैठी
1: बिल्कुल
0: करी मोबाइल फोन दिखा देना जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपने अपने
0: है
1: कमरे के मस्त
0: जी
1: कोई मेहमान आए कोई रिश्तेदार आए कोई ये नहीं
0: जी कोई मतलब नहीं है
1: बस हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो हाँ क्या बच्चे जो संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार बचपन है
1: ये
0: तो जो एंजॉय करना चाहिए।
1: भी अपना गेम पर ध्यान दो पढ़ने लिखने वास्ते बस
0: जी
1: ध्यान दिया
0: जी
1: मोबाइल मोबाइल का कम इस्तेमाल
0: जी मोबाइल दा जेड़ा इस्तेमाल है से बिल्कुल कम करा। अगर तुम जो लगता है कि जरूरत है ताही तिसदा
1: अच्छा
0: यूज
1: ताई
0: करा
1: ताई हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी जी तो अशोक जी आज तुम कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: एक गाना सुनना जी मैं वो टेन संग ये गाना सुन
0: जी कुंदिया
1: टेंशन वाला इट चल जाएगा बड़ा
0: जी गाने दे बोल याद है तो जरूर एक बारी रिमाइंड कराई दिया
1: बुरी है गाने अब लगी दुनिया टेंशन
0: जी अच्छा
1: नू
0: जी
1: चार
0: जी
1: करिए
0: जी तो हाँ जिंदगी सोनी दी गल करा दे
1: हाँ
0: ते
1: जी हाँ जी
0: से
1: हाँ जी हाँ जिंदगी सोनी है
0: जी से गाना हाँ प्ले करी त्या दोबारा जड़े से हाँ प्ले नहीं कर सकते ना जी कोई और
1: तो फिर
0: फरमाइश
1: कांगड़ी का फ्लाई है तो ठंडी हवा जोर जी जोर दे चीला
0: जी
1: जी डालू
0: जी जरूर ठंडी ठंडी हवा ही तो इस टाइम झुला दी ता यहाँ जो थोड़ी देर गर्मी ते राहत मिली ना जी जी
1: बिल्कुल
0: जरूर तुहदी फरमाइश तुह तक पहुंचा दी जी जुने वास्ते धन्यवाद जी
1: बिल्कुल
0: जी ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तो शो तो अगले जेड़ा श्रोता न सभी जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो सर जी क्या हाल है।
0: जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्म शाला च ठीक ठाक है न
1: बढ़िया जी बढ़िया छत्तर
0: जी तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना किया है जी
1: बोला जी
0: जी चैतुर्वे ते बोला दे मंगल जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो मंगल जी क्या काम कार तुहां लगाया क्या करा दे आज
1: काम कर रहे जी थोड़ी ठंड पी गई
0: जी। अच्छा गर्मी ते जेड़ा राहत ऐसे जरूर मिलती है ना जी
1: इलेक्शन हो ये प्रधानमंत्री बने हैं हाँ
0: जी वही इलेक्शन तो हिंदी साइड भी ना जी
1: जी चैतुर्वेदी जी
0: जी चलो अच्छी गाल है जी
1: समय थी दे ना उड़ा का कत्ती ये कोई आने का लो
0: जी कल जेड़ा ऐसे तिदा रिजल्ट भी आई आना ना जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: मैं तेन कित करे बैठा मशीन वाले ये की
0: जी
1: कर मेरा निका दिया
0: जी जरूर ये भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद जी
0: जी आ बोला देना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने अगले जिला श्रोता है ना तीना कन्ने भी कर देना कल बात। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी महाराज उस मालिक की दया से बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी
0: जी ठीक ही चाहिए बिल्कुल ठीक चाहिए ना जी
1: बिल्कुल महाराज जी
0: जी जी तो हाँ अपना ना दसी दिया कने कुतु दे रहने वाले ने जरूर दसी दिया जी
1: महाराज जी मेरा नाम हरदेव है
0: जी
1: कने चमंडा डाढ़ दे रहने वाला जी मैं
0: जी हरदेव चमंडा डाट दे रहने वाले ने जी
1: जी
0: ता
1: माज
0: हरदेव जी क्या तुहां काम कार छेड़िया आज क्या करा रहे तुहां
1: आज जनाब कोई कम कार नहीं खेड़िया राती 1 बजे के 3 बजे के 15 मिनट पर बरखा लगी पई थी फिर
0: जी तूफान कने बिजली
1: हाँ
0: जड़े से एक कन्ने आई थी ना जी
1: जी सब हाँ जी कन्ने आई है
0: जी
1: ही
0: जी
1: फिर हौली हौली बरखा लगी रही जनाब
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: देखते सुन दे रहा फिर ब्याह हो गई भैया ने फिर ना चली गया भरा भरू फिर आई फिर घर आई रहे
0: जी
1: जी
0: तो
1: महाराज
0: आज यहाँ जेड़ा गलबात करा देना से करा देना पुरानिया यादा जो जरूर ताज़ा तो हाँ भी करी सकते ना जी क्योंकि जेड़ा बचपने दिया यादा ने या पुरानिया यादा ने से जरूर आहा जो यादा कन्ने संजोई करी रख देना जी कन्ने अपने कन्ने जोड़ी कर रख दिया
1: जी महाराज जी
0: जी
1: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬੁੜੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂ, ਕਈ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੀ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਆਹਾਂ ਗਲਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰਿੜਕੀ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੁਆਣੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਅਰਮਾਨ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ
0: ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ।
1: ਸਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੋਈ ਕਰੀ, ਦੇਖਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
0: ਕਹਾਣੀ
1: ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
0: ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ।
1: ਜੀ
0: ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਿਸ ਚ ਆਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਤੀ ਨਾ ਕੁਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ
1: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰੀ ਜੀਆ।
1: ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਜੀਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੂ ਜੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ,
0: ਹੈਂ
1: ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਆਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਬਹਾ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨ ਜਾਂ ਆਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲੂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੜੇ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜੀ।
1: ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਬਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ,
0: ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਂ ਕੁੰਦਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ।
1: ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੱਚਦੇ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰ, ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾ ਚ ਮੋਰ, ਨਗਰੀ ਚ ਬਚਦੇ ਮੋਰ।
0: ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ,
0: ਧੰਨਵਾਦ
1: ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
0: ਤਾਂ ਸ਼ੋਤਾਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ।

0: दर्शकों तो तुम सारे सुनिया ये भजन, इस भजन की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नाव है प्रकाश जी, तिना तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने से रहने वाले न सुके वाग ते, कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने भी कर देना गल बात। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न
1: जी?
0: तो कुथू ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: जी हाँ धर्मशाला ते बोला दी जी, कने मेरा नाम पंकज है जी।
0: जी पंकज जी, क्या काम कार तुहां लगे या क्या मौसम जड़े से धर्मशाला दा बोला दा इस टाइम?
1: मैडम बस हाँ सर जी रेस्टोरेंट काम कर दे।
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ धर्मशाला रेस्टोरेंट से कोतवाली बाजार काम कर दे। आजकल लगभग सीजन चल रहा
0: जी,
1: काम कार बड़ा ज्यादा आजकल
0: जी।
1: हाँ जी बस
0: जी जी जी जरूर जी जी। तो आज हाँ जेड़ा गल बात करा दिन से करा दिन पुरानिया यादा जो ले करी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, तो तुम्हें क्या लगता जेड़ा बचपन है से सबसे खूबसूरत है कि नहीं है खूबसूरत?
1: बचपन तो बचपन ही था मैडम, और निकली गया
0: जी। चलो निकली तो गया पर यादा तो हाँ करने ही है ना बचपन ही दिया।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी, क्योंकि
1: यादा
0: जी
1: बचपन याद आंदा था मतलब दिल खुश हो जाता है पहले भी यादा होनिया।
0: जी जी, कोई जेड़ा शरारत हां कीती होंदी हां जो बार बार से शरारत माइंड करवाईंदी कि नहीं यहां अपने बचपन च ये कर दे थे वो कर दे थे किस प्रकार? वैसे भी अंबा दा जेड़ा सीजन है से लग गया ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, तो कितने गाँव के जितने भी हैं या हाँ मिली जुली करी जड़े से अंब लौंदे थे, फिर नमक मिर्च जड़े से ले आनी, फिर स्कूल है या घर है कुछ भी जड़े से खाना शुरू हो
1: जी
0: जाना
1: हाँ जी हाँ जी। स्कूल टाइम भी याद आई मुझे। हाँ जी स्कूल टाइम तो हाफ डे होता है, हाफ डे।
0: जी जी,
1: उस टाइम हाफ डे क्या करते हैं मतलब लंच बॉक्स वगैरह आंदे नहीं होंगे, यहाँ कम ही आंदे हैं।
0: जी जी
1: हाँ चली जाना कुछ लोगों ने करे तो अमरूद वगैरह चोरने।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी तो दिखा ये यादा होनी है कने कुछ यादा जिड़ा से यहाँ माइंड कर दे तो जो बार बार जड़े से याद होंगी कि नहीं यहाँ भी अपने टाइम से इतनी मस्ती करते थे पर जिन्ना ही बचपन से यहाँ बाहर आते तो हाँ जो समझ आता कि असली जड़ा जिंदगी ऐसे शुरू हो जाती ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हर जिम्मेवारी या टेंशन तनाव जड़े से फिर शुरू हो जाता पर जिंदगी है ना, तो जिंदगी च कभी सुख है तो कभी दुख है ना जी। जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके जी।
1: गीत सुनाई दे तो हाँ
0: जी कुंदिया गीत
1: पहाड़ी गाना पुनरंज ओ डाडे दी रेडियो वाला सुनाई दे
0: जी। जरूर ये गीत तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा जी। ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, ता शुदा थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कने सुनदे न अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हूँ तुम सोचा दे होनी ने कि कौन दे यहाँ तक पहुँचनी है या कुछ ते फरमाइश अह जो आई हो वे जरूर थोड़ा दिया वेट करा, पहले इस गाने जो सुना फिर ही तुम तक दस देना।

कांगड़े दा तुम सारे सुनिया एक गीत। इस गीत की फरमाइश अह जो आई वे कुल्लू ते कने तिना दा ना वे अशोक जी तिना तक अहां एक गीत पहुंचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय कीता। ताशो तो ठंडी ठंडी हवा जुलदी जुलदे झीलां दे डालू झीलां दे जिहड़ा डालू हन से ताई जुलदे न जलू अहां अपनी प्रकृति दा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखदे न। तो अपनी प्रकृति का ख्याल भी रखा कने अपना जिहड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा कने अहां भी तुहांदा जिहड़ा ख्याल है से रखदे न। फिर ते थोड़ा जिहा अगे वधदे न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न। सुनदे न इस प्यारी ते भजन जो दर्शो तो इस भजन की फरमाइश अह जो आई वे डाट चमंडा ते कने तिना दा ना वे हरदेव जी जरूर तिना तक अहां ये गीत पहुँचा देन ये भजन पहुँचा देन तुम सारे भी इंजॉय करा।

तयशुदा ये भजन तो हाँ इंजॉय किया कनेसी भजन करने यहाँ फिर ते वापिस आई हूँ। तयशुदा माँ दी यहाँ गाल करिए तो माँ पर अहाँ क्या लिखन, कुछ ज़्यादा तो अहाँ नहीं लिखी सकते, पर माँ का जिहड़ा जिक्र है से हमेशा हर किसी की जुबान पर जिहड़ा है से रहिंदा है। माँ जालू डांटती है तालू झुकी करी उस डांट जो जिहड़ा है से स्वीकार जिहड़ा है से अहाँ जो करी लेना चाहिए। माँ जिहड़ा से अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। माँ जिहड़ा से अहां जो अच्छे संस्कार अच्छा व्यवहार जिहड़ा से अहां तक पहुँचाती है। कने अगर माँ दी अहां गल करिए ता नौ जिहड़ा नौ मंथन से अहां जो अपने पेट च जिहड़ा से जरूर रखती है। कने उसके बाद जिहड़ा अहां दा पालन पोषण है सभी बेहतर तरीके ने करती है। तो माँ पर अहां थोड़ा यानी कि जेड़ा यही है कि लिखने वास्ते तो बड़ा कुछ है, पर माँ दी जेड़ा अहमियत है सहां दी जिंदगी च बड़ी ज़्यादा है। तो इसी लाइना कन्ने फिर त्यहाँ थोड़ा दे अग्गे वर्दे न कन्ने अगला जेड़ा भजन है से तुहां तक पहुँचांदे न। तुहां सारे भी सुना इस प्यारे दे भजन जो प्यारी दिया फरमाइशा जो।

पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्या कई सफर दा जिड़ा स्नेह से थुई संपन्न होंदे तो तुहां सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने ने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनांदे रहा।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन तो है ट्यून कर रहा है चूर बज गए 2 मिनट बज गए इन श्रोताओं और इंतजार बुना तो अपने गादे कार्यक्रम का बिल्कुल इंतजार बुंदा है अपने मनु इंतजार बुंदा है ना, लेकिन कभी कभी अपने मनु कैंसो भी दगा करी गंद है इन श्रोताओं अजय क्या है पंचायत चुनाव में ये रुगड़ दिन है ना। बहुत सारे इन जो प्रत्याशी थी तीन बड़ा कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर बड़ा यकीन तो अपने पर अपने मनु पर कि असू के असो वोट पे गाना सूखे असो इतना वोट किया सो पे गाना, लेकिन कुछ कुछ अरे दिल के अंसो बड़े टूटे हैं, लेकिन कुछ अरे पल्ले की असो जीत भी आए हा। और जहाँ पल्ले जीत आए तो स्पेशल अपने अपने बंदे फोन करी करी के असो जे कि हिंदी भाषा में सरल भाषा में बोलो कि सेवा बंदे आ तो सो सेवा भी भूए हा है। तो ये पंचायती चुनाव आ, हालांकि पंचायतों वह कुछ तय न कर सकते हैं कि ईडी थो क्या बुना क्या ना बुना है, लेकिन फिर भी पंचायत रे पहली बार योल रे गल करु करता योल में पहली बार के श्रोता हूँ सो पंचायत बने हाँ। आज़ादी थो बाद कोई 70 साल रे तड़ी व्यक्ति थी है, कोई 85 साल रे, कोई 80 साल रे, तो तिन्हें अपनी सारी उम्र में पहली बार अपनी पंचायत जो अच्छा कराने वास्ते बढ़िया कराने वास्ते किया सो तिन्हें वोट दिते वोट करे शो तो है ना, वोट दिते दो दो ढाई ढाई घंटे लाइना में लाई करी किया सो तिन्हें अपने प्रत्याशी जो वोट दिते और कसकी वे जिन्हें वोट दिते सो कोई प्रत्याशी जीते भी गए कोई हारे भी गए। तो चलिए हार जीत तक जिंदगी का पहलू हा श्रोता ये तो चलते रहना हाँ, लेकिन असली मजा तता है कि अब पंचायत आज़ादी थो बाद अब बने तो इस पंचायत में किया सो बहुत सारे फंड भी इन्हें बाकी ने और बहुत सारे काम किया सो भी भूने हो किया सो बाकी है, लेकिन तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गए और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के ने सो चल रही हैं श्रोताओं। तैया कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच सुरेखा जी री फरमाइश थी हाँ अभी सके पंजा स्किंटा री फरमाइश तई फरमाइश पूरी कर लेंदे तथों बाद करमचंद री फरमाइश तहाँ जो भी है जरूर पूरा कर ले। बहरहाल हूँ इंदे तू सब भी प्यारे दया आगाज कर दे नज इसकी तहोगे बने रहे तो ये सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज तुम दे सब।

चलिए शो तो कार्यक्रम मिलती है अपने गप्पा तो बिल्कुल लाइव फोन करते हैं अपने अपने रेडियो सेट में आता इस नंबर मंच कॉल कर सकते हैं तो है 7018889 पर नंबर आख मौके फिर तू होगी शेयर कर दें साझा कर दें 7018889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो सुनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं श्रोतो है गल्ला रा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर हुआ बहुत सारी अब आज बहुत जगह आज भी आज त्रिया चरण आज लास्ट चरण है और आज भी किए सो बहुत तरह दिल टूटने और बहुत तरह दिल किए सो जुड़ने भी हैं बहरहाल प्रत्याशी जेड़ा भी बुआ मुझे तो लगना चिंता कि ग्रह रहा हर नागरिक जिन्हें तीस वोट पूरा जिन्हें ना पूरा सो भी सेरा नागरिक है क्योंकि सो प्रतिनिधि है सोता तस कुर्सियाँ किया सो बेखुरा है ना तो सेरे वास्ते पूरा ग्रह किया सो अक बुना चिंता है ना इना की कुछ हो किया सो धन्यवाद करने वास्ते कुछ हो तू है हद दिल है कुछ हो तू है ना हद है या तो फिर एक धन्यवाद कर ना करना था कसीरा भी मत करा और अगर करना था फिर सबीरा करा जो कि प्रतिनिधि सो ही बेहतरीन प्रतिनिधि बुंदा सो ही अच्छा कैंडिडेट बुंदा जो पूरे ग्रां जो सोगे ले करे चला हर एक जो वोटर है तो सोगे ले करे चला है ना सो कोई प्रतिनिधि मेरे ख्याल तो ऐसा प्रतिनिधि ना भूना चाहता किसी भी ग्रां अंदर कि भाई अपने चोर पंज जो चल रही थी सो खटेरे और तिजों कराई तो सब कुछ तो तिजों डिनर कराई था बुझो ना सो मात्र ये सीख के मुझे लगता है जो चलो टीम वर्क बुंदा कर टीम बुंदे आकर सो मायने रख देगी टीम हाँ लेकिन गल ऐसे है कि सो सिर्फ केवल 8-10 बंदे जो बुंदे सो इना जतन देन है ना ठीक है सो टीम आकर लेकिन जतौरत है वोट तो ताई ज़्यादा पेंदे ना जने ग्रां आले तू सो जतन दे हिन ग्रां रहा हर एक नागरिक रहा तुस वो वोट प्यूरा लता है तो जितने दिन है ना तो चलिए हे बुने चिंता ऐसे थों किया ग्राउंड लेवल थों किया सो कार्यक्रम चलता हा शो तो बहरहाल जो टीका जताया रहेंद है वो प्रधान बन रहे हैं तिज होगी तुस वो जरूर है रूबरू करवल है और बाकी दुतकड़ा दिन इन्हों दे रिजल्ट कितना कौंसलर रेंद अपने इंदन जो इंदे कम्युनिटी रहे हैं तिज होगी तुम सभी जो रूबरू किया सो जरूर कर ला जी है ना तिज होगी गलबात किए सो है लाइव जरूर कर लें अगर सो कंफर्टेबल बोले इंटरव्यू देने वास्ते तो है ना तो बहरहाल दुते खुलना हाँ सीआईसी पट पिटारा था शो तो है ना तो तक खोलना हाँ काम डाउन शुरू होना हा धर्मशाला वे स्मार्ट सरकार रा स्मार्ट सरकार रिके सो बेसर

बेसब्री होगी इंतजार हा कस संभालना हा महापौर रा कमान एता जल्द ही पर्दा हटना दत्ते कि कस संभालना जी जी मई वा महीना अपने अंतिम पड़ाव पर गच्छू करदा और हम अंतिम पड़ाव री और के सो बड़ू करदा ते धर्मशाला स्मार्ट सिटी व सीआईसी बारा अपने चरम पर पुजू करदा हा। नगर निगम चुनाव रे परिणाम इने पर अब महज 24 घंटे का समय शेष किया सूर्य वर्षो तो आज अभी तो 24 भी ना बचे बुने क्योंकि चूर बज गए ता ये थोड़ा करे घंटे बचे न अब तो समय शेष आ आज 30 तरीकन है भली भांति जान दिन 30 मई के ऐसा बुझ गया 31 मई जो कि आ हिसाब बुझ गाना कि शहर री कमान किसे रे हाथ ते गया सुगाने हा। 31 मई जो भैगा 9 बजे वोटिंग री गिनती की सो शुरू बुझ गाने और 11 बजे तक नतीजे किया सो इना शुरू बुझ गाने हिन शतो ता चुनावी रणभूमि मा अपनी किस्मत अजमाई चुक रहे प्रत्याशी भी धड़कना अब हर जी जी आवर्स बीतू करते जी घंटे बीतू करते तीजा सो की किया सो तेज बुना लगू करती हिन छो तो नतीजे भी उल्टी गिनती शुरू भूना किया सो लगी प्योरे और नेता जो नेता तैयारी राती री निंद्रा गया न सो और ज़्यादा बेचैन बुच्चू कर दिन दिना मन दिना चैन ना और राती बेचैनी सो गाय बुचगा नहीं दुते अब है और हर कोई बस रविवार बैगा इंतज़ार किया सो करू करता यानी कि दुतकड़ी बैगा इंतज़ार किया सो हर कोई करू करता है जब ईवीएम तो जनता रा फैसला किया सो बाहर ही ना धर्मशाला रे हर वार्ड गली और नुक्कड़ पर इस समय केवल लाख ही चर्चा हा इस बार इंदा पार्षद कौन हा और शहर री सरकार रा माँ भारत कौन जितला। स्मार्ट सिटी मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधि और शहर रे विकास जो नई दिशा देने वाले नए मेयर और डिप्टी मेयर री कुर्सी भी बड़ी बेसब्री होगी कि असो इंतजार करू कर दे इनशो तो चाय री दुकाना था लेकर सोशल मीडिया ग्रुप तक के सो हर जगह केवल यही चल रहा है यही चर्चा चल रही है जी थार अभी चर्चा किया सो चल रही है इस चुनाव में प्रत्याशी इतने प्रत्याशी उतरे और कसेरे किस्मत की सो चमकले सो अभी दत्ता लगना पता 11 बजे तक रिजल्ट चली ना इंतजार करा तुंदा रिजल्ट जनता में रिजल्ट किया सो सर हाखरी पर गुना बहरहाल चल देना और करमचंद जी जो कि योल नोड रानी मंदिर रे निवासी नहीं यारी फरमाइश में होने देने गीत इस दुनसो की जरूर है गीत होने लै सो तो बने रहे तो सब आज सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे।

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগা হার্টস পর রেডি গুঞ্জন ধারমশালা তো হ্যাঁ সব টিউন কর রো কার্যক্রম সচিন কাপুর সোগে বিলকুল হুণ কর দেন লাইভ আপনে ভিডিও সেট মা আইয়া হিন্দে শতগণ আসোগে কানেক্টেড ইন শত পুজ দেন কোন বলুন দেন অর কড়ি থাম বলু কর দেন নমস্তে জি নমস্তে জি
1: নমস্কার
0: হ্যাঁ জি নমস্কার জি
1: কপুর জি আও বন্নু বর্দা হ্যাঁ এর ক্যারিয়ারি কো ঠার লেতা হুম
0: करेरी थो क्या बात है
1: कोठारना पंचायत बन ले आके ले ना
0: अच्छा अच्छा और ठीक ठाक ना
1: बढ़िया सर बढ़िया
0: करे लगरेन
1: करा लगना सर बस लंदे डैडू रंगारा काम कर देना है।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है तो बहुत अच्छा काम मा
1: चलो
0: मनु मनु वास्ते है मनु रे घर के सो तो है चमकाई दिन देन मनु रे आशियाने के ने सो चमकाई दिन देन तो
1: जी जी जी
0: है ना करेरी
1: अच्छा सर आओ
0: जी
1: आओ तू सो गया गल साझा करना चाहता थू
0: जी जरूर
1: रे,
0: करा
1: रेडि, रेडियो रे माध्यम से बताऊं कि हार जीत तो खैर चलती रहती ना
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: पर आसू कैब हुआ कठारना पंचायत मंझ जी जेड़े उप प्रधान थे त्राए
0: हाँ जी
1: जेड़ा विभाग सूरत कर्मचारी
0: हाँ जी
1: 115 वोट के उसको मतलब रिजेक्ट मच गए
0: 115 वोट रिजेक्ट बच गए
1: 115 वोट रिजेक्ट बच गए
0: अच्छा
1: रिजेक्ट इं करे कि जेड़ा स्टैंप बंदे ना स्टैंप जी
0: हाँ जी हाँ जी
1: 102-in-1 बंदे मतलब
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
1: इं पता ना सो विभाग ने क्या कर रहे कि एक साइड मोहर लगनी थी तो दूसरी साइड मतलब कुछ बल्लू दूसरी साइड ना लगनी ही मतलब कुछ मोहर अजीब थी थोड़ी
0: अच्छा
1: मतलब वन साइडेड ही हुई ना सो
0: हाँ जी हाँ जी
1: 115 वोट 10-20-50 मतलब अह मन लेंदे कि पूरी पंचायत में चल तू एक वोट खराब च गया
0: खराब च गया
1: पर 115 वोट बिल्कुल मतलब प्रधान जेड़ा रहा सो तो अपना है ना कोई बाहर ना ना ग्रां रहे ना
0: जी
1: पर हैरानगी वाली है गल कि विभाग ने तू मतलब धांधली की कर दी
0: अगर कंप्लेंट बंदे तो कंप्लेंट कर दे तो एक्शन बुझेगा ना तू
1: पता नहीं सर आओ तो वोट पाई करे तने चलिया थू क्योंकि लोगों वोट पाने ताई बंदे ना दिते ताई वोट
0: जी
1: दीने ता दीने के तमी बलते ना दिते ना देश ने ता चलो कोई ना फिर मैं तो वोट पाऊंगा चले आ जी
0: हाँ जी
1: पर हुन ने मन के मतलब पर सही गल आए कोई मैं मतलब भी मनु नहीं जो फोन करू बल्लू रहा ही है बुच्छू करना मिलो रहा हूं के करू भाई बुच्छू करना था
0: हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी तो मतलब तू नहीं दांत ले ना बुना चंद थी और रेडियो माध्यम थो ये दसना चाहता है कि जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी क्या है सो बड़ी ही ईमानदारी थो करना चाहते हैं
0: बहुत ईमानदारी थो अरे गवर्नमेंट इतना पैसा दिच्छू कर दिया है ना
1: दिच्छू कर दिया वोट राज है
0: और इतनी करे मतलब लापरवाही थो कितने वोट के ना सो खराब हुए ना
1: जी जी 115 सो भी 3 प्रधान ना रहे आदर तो चलो जेड़ा गवर्नर सो मिंजे बना स्टेटल स्टेटमेंट रा सो ना पता
0: जी
1: पर त्राई उप प्रधान थी मतलब 3 प्रधान ना रहे 115 वोट जेड़ा सो रिजेक्ट करी थे और सब थो बड़ी गल अक्सर
0: अफसर
1: क्या बंदे ना जेड़ा है वार्ड वार्ड मेंबर उप्रधान उप्रधान इंया मतलब पहले थो अंदर बाहर ले लेंदे ना जेड़ी विभाग ने क्या कर रहा कि वार्ड मेंबर मतलब पहले थी वार्ड मेंबर की गिनती करनी 100-100 है
0: जी
1: पेटी थी खोल ली थी
0: हाँ जी
1: पेटी थो बाद हद्दे फिर सो प्रधान उप्रधान
0: अच्छा।
1: और पेटी अंदर गए सो मौके पर तो तीन तो पेटी खुली थी
0: हाँ जी
1: मतलब विभाग का को विभाग ने ऐसा क्यों कजो करूँ और ऐसा बुना चिंता कि ना बुना चिंता
0: अब पहले तो पंचरी पेटी की सो खोल दे ना जी फिर तब तो बाद प्रधान फिर प्रधान
1: मतलब जेड़ा प्रधान वो प्रधान वाले भी सो कट्ठे थी है ना वोट पर
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: तो पेटी मन जीती तो सब हाल में देखिए आमे लग मैं भी इलेक्शन लड़ रहा जनाब तो सब तो पहले जेड़े भी प्रतिनिधि बंदे ना
0: जी
1: जो अंदर बहाल देना या प्रतिनिधि एजेंट
0: या एजेंट ही हाँ मेनली एजेंट बंदा
1: जी अब ना प्रतिनिधि भेज सकते अगर एजेंट ना भेजना बहुत है
0: जी।
1: और तीन तीन कोई ना हजरे टोटल पहले वार्ड मेंबर हद है
0: हाँ जी
1: या तेरा एजेंट हद तो दवाली तीन सौ पेटी सब पेटी खोली तेरे उथल पुथल।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी चलो सर जो भी है गाना हुना आई तो सुनील राणे रिओ आज बड़ी है जुना
0: हाँ जी कौन दिन है जी बल्ला बदिया दिया कौन दिन है होना
1: सब बढ़िया ना हुना आई दिया कोई धार्मिक बढ़िया जुना
0: सुनील राणा जी रहा ना
1: और तुंदे मतलब रेडियो जो है तुंदे ना इंदा रेडियो है तुंदे ना आ मतलब परमानेंट 4 बजे बाल लग गया है
0: हाँ जी
1: तने तने लाई दिंदे ना पर
0: हाँ जी
1: फोन कॉल ना कर सकते क्योंकि आ बिजी हुंदे ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी
0: चलिए पर कदी कदी की ऐसो करना भी पेंदे कॉल है ना जी
1: हाँ हाँ
0: अपनी
1: जी हाँ जी आज मैं जो
0: उपस्थिति
1: दो ही
0: देना
1: महीने था
0: पेंदे आ
1: बात
0: अपनी
1: करूँ जी जी
0: हाजिरी की सुलाना पेंदे आ
1: जी जी जी
0: कदी कदी। चलिए ठीक है जनाब सुनील राणा जी ने कोई नुआला की है लाइव शो जरूर ढूंढ ले है ना जी।
1: जी जी जी सर धन्यवाद
0: जी धन्यवाद जी धन्यवाद
1: पूर्जी धन्यवाद
0: जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो हूँ कर देन बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सब भी होने वाले रहा श्रोता गण रहा इंदर श्रोता आंसू गए कनेक्टेड हिंद पुस दिन कुण बल्लन देन और कड़ी थो बल्लन देन। हेलो
2: को राम राम
0: राम राम जी राम राम
2: और जी ठीक है सचिन कौर जी
0: बहुत बढ़िया जी तो अदर सदर ठीक ठाक ना
2: बस ठीक है कल करने टाइम पर अभी बर्खा लगी जाने अभी कभी नहीं मिल बुझ गया
0: रेडियो रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दिया जनाब।
2: हाँ चलिए सर बस इन्हें ना बुझ गया जी।
0: अच्छा
2: अच्छा
0: तो कौन बोल रहे और कड़ी थो बोल रहे
2: हाँ लच्छी राम बोले कौन कचहरी था।
0: अच्छा अच्छा लच्छी राम जी कचहरी हो
2: छोटा बंगाल
0: अच्छा छोटा बंगाल थो क्या बात है
2: हाँ जी
0: कुंदन गीत होना पहले गीत।

0: 8 8 8 7 0 9 पर कॉल करे करे नंबर आख मौके फिर आऊँ रिपीट करनू हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 पर तो है सब शोत अगेन सो कॉल कर सकते हैं। बहरहाल सुनील राणा जीरा गीत हुंडा हाँ वाला तैया वंदे तू सभी हो ए नोला और बने रहे तो सब वो की बेड़ी गुंजन धर्मशाला सुखी गूंज अपने पन रे
1: वो पैरा वो कह रहे वो चेड़ो बड़ा उस्ताद हो
0: माफ कर रहे शो तो उन लिख रहे थे अंदर है नोला तो लेकिन एक कुछ और ही तो फिलहाल उन दिन है सुनील राणा जी की आवाज़ में नवाड़ा गीत मणि रे तो सब सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप गैन सो चल रही था तो सब श्रोता कॉल जरूर करी सकते हैं जनाब 7088879 पर कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत जरूर होने सकते हैं। नंबर आख मुके हूँ फिर तू अगे शेयर करी नो 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना आप पसंदीदा गीत होने सकते हैं। श्रोता अपने क्षेत्र जानकारी किया सबों के साझा जरूर करी सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे श्रोतों के जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक जरूर भर जानकारी किया श्रोताओं सो रेडियो मंच साझा करने लाइक किया सो अवश्य हुआ जरूर हुआ। बहरहाल गीत किया गीता रे जो माला सो इंदे चली रहनी हाँ चौथों जो ट्रेन है सो ये चली रहनी हाँ बहरहाल लेकर चल देन हाँ और तू सो के गलबात कर देन बातचीत कर देन कजो कि अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं तब उस दिन कुंडमलून देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कुंड बल्लून देन और खड़ी थो बल्लून देन माया देवी जी टिल्लू बल्लू दे क्या बात है कदे है मौसम टिल्लू है अब जो लग रहे धूप
1: हाँ जी लग रहे थोड़े थोड़े
0: अच्छा दिन भर कदे कदे रहे हो टिल्लू रे मौसम आज
1: इन्ना रे हो बदलोखा बदलोखा
0: अच्छा
1: जग्गा बरखा होया थोड़े
0: हाँ जी
1: जी और तो है भला ठीक ठाक ना
0: हाँ जी बढ़िया जी तुम आशीर्वाद
1: चलो उस मालिक का आशीर्वाद अच्छे
0: चलिए मालिक रहा तो आए पर मोटे का आशीर्वाद बुना भी जरूरी है ना मोटे ही करे हाथ फेरी इन्ना मुंडा परसों ही बड़ा काफी बंदा
1: हाँ जी जी
0: है ना हाँ जी ता कुंडन की थोड़ा ना पहले इधर सजी
1: नागा रहूँ खोल कुंडिया
0: नागा खोल कुंडिया
1: हाँ जी
0: ना खोल तो कर दा कुंडी अबे
1: तावे नागर टाइम है ना
0: हाँ बिल्कुल अबे ता बिल्कुल टाइम है
1: बत्तर दिन है ना जमीन ना वाले हो
0: हाँ जी
1: हाँ टाइम मरी छल्ली बाणी गा बाणे
0: हाँ जी अच्छा जी एक सवाल आ तू सुध है ना तू सुध भी मुझे लगता क्या करती 40 साल तब बचे गए उन्हें 40-50 साल
1: हाँ बचे गए बच्चे
0: ये धर्मशाला में आईडी रंद है ना टिल्लू में रंद है तो क्या कुछ कितने बदलाव तू है के ना सो अपनी आखरी सामने है रेन
1: अब तो बड़े बदलाव बच्चे
0: जी
1: अब तो सो जी नहीं ए ना था बड़े बदलाव अब तो
0: अच्छा
1: पहले हम देखिए मेल मलाप बड़े अब तो रहा ही ना था
0: अच्छा
1: अब अपने अपने हैं सब नहीं है बस
0: हाय मेरा हाय मेरा
1: हाँ बस ये है
0: अच्छा
1: कोई ना आवे बड़े बदलाव बनावे ता
0: हाँ जी अच्छा पहले जी हाँ बंदे थी ना बैक आर अंदर भी हाथ बटंदे थी है ना सरीका दरीका अंदर या आस पड़ोस अंदर के ऐसो
1: बड़ा बड़ा
0: मतलब वो करने की जरूरत ना बंदे थी जी है ना मन वो करने की
1: ना
0: पूरी जिम्मेदारी भी समझते थी और
1: समझती है
0: तो क्या आज जी
1: आज का टाइम मैंने समझा वे कोई भी टाइम ही ना कसी है था
0: हाँ टाइम ही नहीं अच्छा टाइम मरे कि टाइम तो पहले भी था 24 घंटे बंदे थी यहाँ पे भी 24 घंटे ना
1: तेरे पता नहीं क्या ये ना दे बीजी बंदे
0: है ना जी
1: कोई था ना लगता
0: कोई था ना
1: मैं कोई को भी हो रहा अपने तो भाई ਤਤਲਾ ਨਾ ਬੇ ਕਮੌਰਾ ਇੰਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇੰਦੇ ਬੇ ਕਮੌਰਾ ਬਾਹਰ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਤੇ ਇੰਦੇ ਲੈ ਬੇ ਕਮੌਰਾ ਜੀ ਆਸੀ ਬਜੀਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਰ ਕੋਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੀ ਆਪਣ ਬੇ ਤਾਹਣੇ ਕੇ ਬੜਾ ਫਲਾਟ ਬੰਦਾ ਤਾਹਣੇ ਇੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਰ
0: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿਨੀ ਡੇਟ ਮਾ ਬੇ ਕੀ ਐਸੋ ਟਿੱਲੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇ ਟਿੱਲੂ ਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਖਾ ਨਗਰ ਖੇ ਜੋ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇਹ ਜੋ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹਨ जो रीति रिवाज है मतलब सो आज भी तड़ी हिन
1: इन इन
0: इन है ना चलिए जी की ये कैरी ऑन बुने ही हगुम बढ़ है ना
1: और
0: प्रथा थी ना वैसे कि आओ इन्हीं मेरे को कमाओ तो मुसेरे को कमाना
1: या हा
0: प्रथा है घर का नगर का गुआ इत्या
1: गुआ इत्या ना गुआने वाले बला है क्या बढ़ना था
0: अबे पहले घर अंदर बंदे थी बे कार्ज है ना अब से तो होटल अंदर शिफ्ट बुझ के चुन दे
1: आओ ट्राई चलिए चंदा देता है से मतन बच्चा है।
0: पैसे
1: ना
0: मते पर प्यार मता नहीं है,
1: प्यार नहीं रे उधर
0: प्यार तो नहीं है
1: ना,
0: बस यहाँ।
1: ताले
0: हाँ
1: हल्के हल्के घर बार बंदे ही है ना,
0: जी।
1: ता बड़ा प्यार बाप बंदा थो आवे ता हिंडो हिंडे आते प्यार बाप नहीं है
0: प्यार भाव नहीं है।
1: ना, एक माई गोते खाई गोते और रही गो
0: हाँ बस
1: बस
0: यही आजकल।
1: ये आवे। हाँ
0: है ना जी,
1: ना नहीं लम के बच्चे तो सब कुछ छड़ देगा ना ठीक है,
0: बिल्कुल
1: लेके
0: सोए
1: तो कुछ
0: ना।
1: न गाना
0: हाँ जी सोए ना जी, 2 मिनट हंसी खेल ले, ले मजाक करे लो, खरकने खतई ले, सोए अपना
1: हाँ
0: बंदा।
1: ये गाना अपना बस और न
0: बाकी
1: गाना कुछ
0: सोपी
1: भी
0: के गाना कुछ न गाना,
1: कुछ न गाना।
0: कयो कस की वे दिल दुखाना, कयो कस की बुरा बोलना, कयो
1: ना
0: पर
1: जेड़ा
0: मानो।
1: बाल दे सब राज रहन,
0: हाँ
1: जेड़ा
0: राजी
1: के
0: रहन,
1: नहीं गंदे सब राज रहन, खारा रहन बढ़िया सुखे रहन बस।
0: सुखी रहन
1: ए
0: जी।
1: ना
0: गीत तो दसी था नागा खोल कुंडिया, एक गीत तो जरूर होना
1: हाँ
0: ले।
1: जी
0: हरा
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी ठीक
0: ठीक है जी, नमस्ते धन्यवाद
1: नमस्ते से धन्यवाद ठीक।
0: धन्यवाद। चलिए शो तो अगले शो तो आसूगी कनेक्टेड हिन वेडी गुंजन धर्मशाला मंच। नमस्ते जी,
2: नमस्ते सचिन भैया, क्या
0: नमस्ते जी, नमस्ते।
2: कर देने
0: जी लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय, कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन।
2: आओ, अभिषेक कपूर बनूंगा दाढ़ी पे। आओ
0: हाँ जी तुंदी आवाज कटी करी सुंदे जी।
2: अभिषेक कपूर बनूंगा दाढ़ी पे दाढ़ी
0: अक्षय कपूर जी कड़ियों बोलूं देन।
2: पे
0: जो जगह न क्लियर है इच्छुंदे तुम दी कड़ियों बोलूं देन।
2: दाढ़ी दाढ़ी। हाँ
0: अच्छा दाढ़ी थों।
2: जी
0: अक्षय कपूर जी क्या कर देन तो है,
2: पढ़ता
0: कस क्लास में कस स्कूल है,
2: प्लस वन में पढ़ता रेनबो स्कूल है। हाँ
0: प्लस वन में रेनबो स्कूल है,
2: जी
0: क्या बात है। चलिए तो अक्षय कपूर जी क्या फरमाइश है तुंदे,
2: ईशांत बार जो अभी नवा गाना सुनना
0: ईशांत भारद्वाज नवा गाने वे बोल के बोल बल्ला,
2: तो ना छूरा हिमाचली रंगत।
0: हिमाचली रंगत, क्या बात है, हिमाचली रंगत नॉन स्टॉप पहाड़ी।
2: हाँ जी हाँ जी ठीक
0: ठीक है अक्षय कपूर जी, जरूर होने ले तो सुबह गीत है ना जी।
2: है
0: नमस्ते जी। शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं। आइए इंदे अगले श्रोता जो है कर दें कनेक्ट। नमस्ते जी,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल लूँ देन और कड़ी तो बोल लूँ देन। हेलो हाँ
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल लूँ देन और कड़ी तो बोल लूँ देन जी।
1: मैं पायल धर्मशाला थी।
0: अच्छा जी पायल जी, करे लुगरन क्या लूरा करना।
1: कुछ नहीं बस सुते हो।
0: अच्छा कुंदने की थोड़ना पायल जी, तुसु
1: कांगड़े दा टिल्ला। हाँ
0: कांगड़े दा टिल्ला।
1: जी
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तू सुए प्यारे दे गीत है।
1: ठीक है जी धन्यवाद जी ठीक
0: धन्यवाद पायल जी, धन्यवाद
1: है।
0: जी। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो अभी थोड़ा करे आगो बढ़ाए लेन, और कजू की फरमाइश दौर थोड़ा करे और आगो चल देन, और फरमाइश दौर पूरा कर दे चल देन।

श्रोतो एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून को रॉ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है इस समय वेड़ी गुंजन में बिल्कुल लाइव है। आइए जी चलते रहो और अगली फरमाइश भी किया सो पूरी खरीदने नागा खोल कुंडिया है ना जी। इस गीत जो है जरूर सुन लेते तथमत कुछ एक जानकारी हिन जो तो सो गया सो शेयर करने हिन्न

चलिए श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैंसो चल रही है ना दुई फरमाइश बची यसु जरूर है पूरी करी लैनी हिन क्योंकि कि समय रहा अभाव है लेकिन तू सु दस चंदा श्रोतो है साल मानसून में घट बरखा बने और गर्मी की ऐसो बेहाल करना है जनाब। देश भर में भीषण गर्मी रह बिच अब मानसून जो लेकर भी चिंताजनक संकेत के सो साम नहीं चुकर दे। भारतीय मौसम विभाग रे अनुसार अनुमान गल अगर हम करूँ श्रोताओं तो जून थो सितंबर 2026 रे बिच होने वाले दक्षिण मानसून सामान्य थो कम रहेगा ना सो तो मौसम विभाग आए बल्लू कर दे इनकी इस बार देश में कुल बरखा के असो करखन करखा औसतन रहा सिर्फ 90% रहने भी संभावना है और घट के असो बरखा बोने हैं श्रोतों और खेती और अर्थव्यवस्था पर असर आशंका के असो पैनी है। चल देना और ईशान भारद्वाज।

चलिए शोतो पादा इसकी तरह आनंद है जरूर ले ले। बहरहाल इजाजत शानदार तुम सब बीतों को जो कि समय बच गो फिर मिलते हैं छिए थो अठ वापिस गंदे गंदे कांगड़े दा टिल्ला माता दा भजन के असो होने करी गंदे इन शोतों ता और सचिन कपूर तुस थो ले लेनो इजाजत छिए थो अठ फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला मा मंच अपने इस गादे कार्यक्रम थो इजाजत लेनो आ ये बोलना चाहनो आ हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे माँ बाप री सेवा जरूर करा शोतो तेरी सेवा में बहुत सुकून मिलता है माँ बाप री सेवा हमेशा करा सियाने रा आशीर्वाद हमेशा रखा और खुश रहा तंदुरुस्त रहा।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडी जो कि सचिन कपूर है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, होप सो, आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अक्सर कहता हूं, है ना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है जनाब। और देखिए, यह है धर्मशाला। आज भी मौसम जो है वो सुबह जो है वो बारिश थी, इवन की रात को भी मुझे लगता है कि कई हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी जगहों में जो है वो रात को भी बारिश हुई होगी। तो ये है धर्मशाला शो, तो इसे कहते हैं धर्मशाला। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस धर्मशाला को ठेस तो पहुंचाई है, कहीं ना कहीं हमने इसको जो है वो वाकई में एनवायरनमेंट को हमने डिस्टर्ब तो किया है, पर्यावरण को हमने डिस्टर्ब तो किया है, जिस वजह से जो है वो चीज़ें अनबैलेंस हो रही है। लेकिन बहरहाल फिर भी नेचर जो है वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है, अपना प्यार दे रहा है। और इस प्रकार का मौसम जो है वो भरी गर्मी में, जहाँ पर हिमाचल की ही बात करूँ तो ऊना में जो पारा है वो 43-40 तक जो है वो पहुंच रहा है। वहाँ पर इस समय अगर धर्मशाला की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो धर्मशाला का इस समय मौसम है। श्रोताओं, नमी की बात करूं तो नमी इस समय 77% नमी है इस समय धर्मशाला में, है ना जी। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 8 किलोमीटर तक विजिबिलिटी है। तो यह धर्मशाला का मौसम श्रोताओं इस समय। चलिए हम कोशिश करेंगे अपनी ओर से कि धर्मशाला का मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहे और हम इसे ज़्यादा ठेस ना पहुंचाएं, एनवायरनमेंट को हम जो है वो ज़्यादा ठेस ना पहुंचाएं, एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित रखें, साफ़ सुथरा रखें, प्लास्टिक ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, ऐसी कोशिश जो है वो हम धर्मशाला के बाशिंदे करते हैं शतों। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

बिल्कुल शोधन, जब दिल भी दिया है जान भी दिया है तो फिर दगा किस बात की होगी, फिर दगा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है रिश्ते में भी ऐसा होना चाहिए कि दगा जो है वो बिल्कुल भी ना हो। बहरहाल याद रखिए श्रोताओं, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी सुनने वालों का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ यूं ही। जी बिल्कुल, अब लेके चलेंगे आपको आज के विचार की ओर। कहते हैं समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय और परिस्थितियां जो हैं परिस्थितियाँ जो है श्रोताओं वो बदलती रहती हैं, इसलिए फल की चिंता किए बिना केवल अपने सही कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। जी बिल्कुल, अपने सही कर्मों पर ध्यान जो है वो केंद्रित करें श्रोताओं। अब सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलेंगे आपको एक और प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ एक जानकारियां जो हैं वो आप तक हम ज़रूर साझा करते हैं, श्रोताओं आप तक पहुँचाते हैं। बहरहाल कल खुलेगा वैसे पिटारा, किसका? CIC पिटारा, इसको हम कह सकते हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है श्रोताओं, धर्मशाला को स्मार्ट सरकार का अब इंतज़ार है। कौन संभालेगा महापौर की कमान, ये इंतज़ार है। जल्द हटेगा पर्दा श्रोताओं, चंद सिर्फ और सिर्फ आज की बात, आखिरी आज की रात जो है वो सभी को इंतज़ार होगा। बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, शायद उनको नींद भी ना आए, है ना, लेकिन ये भी ज़रूरी है लाइफ में। अब देखते हैं कितने काउंसलर जो है वो BJP लेके आती है और कितने काउंसलर जो है वो कांग्रेस लेके आती है। शो तो जैसे जैसे मई महीने का अंतिम पड़ाव, मैं कहूँगा कि अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धर्मशाला के जितने भी कैंडिडेट थे उनकी भी कहीं ना कहीं जो है वो उनका दिल भी धक धक कर रहा होगा, है ना। तो नगर निगम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं जी, बस आज की बात बची है श्रोताओं, समय शेष रह गया आज की बात का। आज 30 मई हो चुकी है, 31 मई यानी कि कल ये साफ हो जाएगा कि शहर की कमान किसके हाथों में होगी। 31 मई को सुबह 9 बजे वोटों की गिनती जो है श्रोताओं वो शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। श्रोताओं चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमा चुके प्रत्याशियों की धड़कनें अब हर बीतते घंटे के साथ जो है वो तेज होने लग रही होंगी, है ना। नतीजों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू होते ही नेताओं की रातों की नींद और दिन का चैन गायब है और हर कोई बस रविवार सुबह का इंतज़ार कर रहा है जब EVM से जनता का फैसला बाहर आएगा। श्रोताओं धर्मशाला के हर वार्ड, गली और नुक्कड़ में इस समय केवल एक ही चर्चा है, इस बार हमारा पार्षद कौन होगा और शहर की सरकार का महाभारत कौन जीतेगा। स्मार्ट सिटी के मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधियों और शहर के विकास को नई दिशा देने वाले नए मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह श्रोताओं केवल यही चर्चा है, जीत और हार का समीकरण जो है वो बिठाया जा रहा है। इस चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के लिए ये दो दिन ये आज की रात, मैं कहता हूँ आज की रात का जो समय है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मतदान संपन्न होने के बाद से ही उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठकर बूथ बार वोटों का गणित सुलझाने में व्यस्त है। हालांकि जनता ने अपना फैसला वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है, इसलिए चुनावी मैदान के जितने भी धुआंधार खिलाड़ी हैं उनके माथे पर चिंता की लकीर जो है श्रोताओं वो सामने नज़र आ रही होगी, साफ दिख रही होगी, साफ देखी जा सकती है। और नागरिकों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है जिससे नतीजों को लेकर सस्पेंस और ज़्यादा रोमांचक हो गया है। अब सभी की निगाहें कल 31 मई की सुबह पर टिकी हैं, इनकी कल की सुबह पर टिकी हैं जब मतगणना शुरू होते ही धर्मशाला की नई सरकार की तस्वीर साफ साफ होने लगेगी। जी बिल्कुल, तो आप सभी बने हुए समय RJ सचिन कपूर के साथ एक कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर। गीत संगीत का पिटारा श्रोताओं यूँ ही चलता रहेगा आपके रेडियो सेट पर।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, जिला परिषद और BDC ब्लॉक डेवलपमेंट सदस्यों के तीसरे चरण का मतदान 30 मई यानी कि आज जो है वो हो चुका है, श्रोताओं संपन्न हो चुका है। तुरंत बाद अब सबकी नज़रें जो है वो चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं। श्रोताओं, कांगड़ा ज़िला के सभी ब्लॉक में 31 मई को सुबह 9 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। जिला परिषद और BDC चुनाव के परिणाम न केवल जमीनी राजनीति की दिशा तय करेंगे बल्कि हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की खास की साख का भी फैसला जो है वो करेंगे। इस कड़े मुकाबले के नतीजों का इंतजार दोनों ही खेमों के दिग्गज बेसब्री से जो है श्रोताओं वो कर रहे हैं। प्रदेश की ग्रामीण

राजनीतिक में प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बीडीसी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पदों का विशेष महत्व है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नई सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतारे हैं। श्रोताओं, पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणी हो गया है। 31 मई की सुबह शुरू होने वाली ये मतगणना 1 जून तक चलेगी, जिसके बाद ही जीत और हार का जो है वो अंतिम और स्पष्ट तस्वीर सामने आ पाएगी। श्रोताओं, तो चलिए अब जिला परिषद और बीडीसी चुनाव में भाजपा व कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो है वो है। शो तो ये वजह है कि इस बार दोनों दलों ने कई सीटों पर जो है वो अपने अधिकृत प्रत्याशी मैदान में जो है वो उतारे हैं। रिजल्ट पर सभी की नज़र है। कल प्रशासन की तैयारी पूरी है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। शो तो जिला प्रशासन ने भी जो है वो काउंसलिंग को लेकर काउंटिंग को लेकर जो है वो कमर कस ली है। श्रोतों, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया कि जिला के सभी 18 ब्लॉकों में मतगणना केंद्र की स्थापना जो है वो कब हो चुकी है। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े और पुख्ते इंतजाम जो है वो किए गए हैं। श्रोताओं, मतगणना केंद्रों पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और लेके चलते हैं आप सभी को इस छोटे से अंतराल की ओर, और वापस अंतराल के बाद गीत आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे हम।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेरी, जो कि सचिन कपूर है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोताओं। ये कार्यक्रम में गीतों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा भी इसी तरह जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। श्रोतम जोनल अस्पताल के पास जो है वो हाफी एक बार फिर एचआरटीसी की बस, जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पिछले चार दिनों के भीतर 2 एचआरटीसी बसों के ख़राब होने की घटनाओं ने निगम की बसों की स्थिति और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रोताओं, निगम की बसों में लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबियों के कारण न केवल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, धर्मशाला के सिविल लाइन क्षेत्र में विवेकानंद पार्क के समीप एक एचआरटीसी बस अचानक ख़राब हो गई। जानकारी के अनुसार ये बस पठानकोट डिपो की थी और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे पर्यटक सवार थे जो आईपीएल प्लेऑफ मुकाबला देखने धर्मशाला पहुंचे थे। बस खराब होने के उपरांत उस बस में सवार पर्यटकों व क्रिकेट प्रेमियों को अपने सामान सहित दूसरी निजी बस में सवार होकर बस अड्डे की ओर जाना पड़ा। पर्यटन और बड़े खेल आयोजन के दौरान बस के बीच रास्ते में ख़राब होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना श्रोताओं करना पड़ा। व्यवस्था मार्ग पर बस के खड़े रहने से यातायात भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुआ और एक अन्य एचआरटीसी बस धर्मशाला के जोनल अस्पताल के समीप खराब हो गई। श्रोताओं, अस्पताल क्षेत्र पहले से ही व्यस्त यातायात वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, जैसे कि आप सभी बखूबी जानते हैं। सड़क पर बस के खराब होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। श्रोताओं, स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त क्षेत्र में बार बार बसों के खराब होने से यातायात प्रबंधन के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन की सवाल उन पर भी जो है वो उठ रहे हैं। श्रोताओं, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था पर भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लगातार कुछ ही दिनों के भीतर 2 बसों के खराब होने की घटनाओं ने एचआरटीसी के रखरखाव तंत्र और वाहनों की तकनीक जांच प्रक्रिया को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। खासकर ऐसे समय में जब धर्मशाला पर्यटन, खेल आयोजन और बढ़ती आवाजाही का केंद्र बना हुआ है, तब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं निगम की तैयारियों पर सवाल पैदा कर रही हैं। लोग व सवारियों में इस समस्या को लेकर जो है वो काफ़ी बड़ा रोष है। तो देखिए, हम भी आए दिन आप रेडियो में सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे ये कि एचआरटीसी की बस जो है आज यहाँ हाफ गई है, आज यहाँ ख़राब हो गई है, आज ये हो गया, आज वो हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एचआरटीसी के जो सदस्य हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज़रूर देना है। वैसे ये टेक्निकल इशू है गाड़ी के, ये तो वो लोग ही जाने, है ना। फिलहाल हम लोग तो बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे श्रोताओं, और कार्यक्रम में लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। एक किसी समय मेरा बहुत पसंदीदा गीत था ये, वाकई में ही, जब ये फिल्म नई नई आई थी श्रोताओं, और ये गीत

चलिए जो तो बहुत प्यारा सा ये गीत आप सभी ने सुना फेम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में, है ना। बहुत सच में हारे हारे हारे हम तो दुनिया से भी हारे, हम तो अपनों से भी हारे। बहरहाल हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। आप सभी बने इस समय सचिन कपूर के साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। 1 जून से चलाया जाएगा विशेष एंटी चिट्टा अभियान। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश की अनुपालना में शुक्रवार को पुलिस जिला नूरपुर के कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो जिला स्तरीय केंद्रों की जो है वो समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता SP नूरपुर कुलभूषण वर्मा द्वारा की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी विभाग और नशा मुक्त केंद्रों के मुख्य अधिकारियों ने व्यक्तिगत व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में SP नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि जिला में 22 अति संवेदनशील पंचायतों की पहचान की गई है। उन्होंने सभी SDM को निर्देश दिए कि वह इन क्षेत्रों में नशा निवारण समितियों की बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति की कड़ी निगरानी व सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक जो है वो 64 नशा निवारण समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ज़मीनी स्तर पर इस अभियान को मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी SDM और सभी SDMO को जो है वो स्वयं इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के निर्देश दिए। युवाओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों में लगातार लेकर वह पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ASP नूरपुर ने सभी गतिविधियों को जो है वो ग्रुप पर अपडेट करने को कहा। बैठक में ASP नूरपुर ने अवगत कराया कि राज्य स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 15 अगस्त 2026 तक एक विशेष एंटी चिट्टा ड्राइव अभियान जो है वो चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नशा के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रोताओं, बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय RJ सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो गुंजन की गूंज के साथ RJ सचिन कपूर के साथ यूं ही।

0: चलिए शोधों का शो दिन भी आए ज़रूर आएगा, हम चाहते हैं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शोधो एफ एम बैंड 91.9। 2 मेगाहर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने वीडियो सेट वेड़ी गुंजन पर। आइए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो अब खोलते हैं। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक धर्मशाला में किया जाएगा।

ये जानकारी देते हुए भर्ती निर्देशक कर्नल विशाल शाह ने बताया कि भर्ती रैली के दौरान हजारों अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो व्यापक तैयारियां की जाएंगी। इसके लिए SDM, खेल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण, विद्युत, जल शक्ति विभाग, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्रोताओं, जानकारियों में जानकारियाँ यूं ही चलती रहेंगी और गीत संगीत भी जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से, अच्छे से, लाजवाब से गीत की ओर। बने रहिएगा RJ सचिन कपूर के साथ, गूंज अपनेपन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

बाकी में ना सोता हूँ, चाहे फिर शीशा हो चाहे फिर वो किसी का दिल हो, एक ना एक दिन तो ज़रूर टूटता है। आप सभी का भी दिल कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ज़रूर टूटा होगा, है ना, होता है, लेकिन किसी का ना भी टूटा हो। बहरहाल हम चलते हैं आगे, और सभी सरकारी भर्तियों में होगा अब ड्रग टेस्ट। बहुत ही अच्छा फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का। जी बिल्कुल छोटो, हिमाचल सरकार चिट्ठे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी नौकरियों पर ज्वाइनिंग से पहले ड्रग टेस्ट को आवश्यक करने जा रही है। ये टेस्ट अब नौकरी से पहले होने वाले मेडिकल का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार शाम को प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में ये आदेश दिए हैं और कहा है, विभाग को कहा है कि इस बारे में संबंधित गाइडलाइन सभी महकमों के लिए जो है वो जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने चिट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत इस तस्करी में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कहा था। पुलिस जवानों समेत 37 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि 91 कर्मचारियों पर अभी भी कार्रवाई होने बाकी थी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों से इस सूची पर हुए काम की जानकारी ली। जिन विभागों ने अभी आरोपी कर्मचारियों को टर्मिनेट नहीं किया है श्रोतों, उन्हें इस बारे में जल्दी कार्रवाई करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के तहत बनाए गए भर्ती निर्देशालय की समीक्षा की और साथ ही सभी प्रशासनिक सचिवों को ये निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों के तहत खाली पदों की जानकारी कार्मिक विभाग को जल्दी दी जाए। इन पदों को कब और किस तरह भरना है उस पर फिर सरकार फैसला लेगी। चलिए श्रोताओं, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, सभी सरकारी भर्तियों में होगा अब ड्रग टेस्ट, है ना जी। और हिमाचल में 1 जून से स्वगणना, 16 से जनगणना जो है वो शुरू होने जा रही है। बताना चाहता हूँ आप सभी को, प्रदेश में जनगणना कार्य पर खर्च होंगे 86 करोड़ रुपया। 1 जून से 15 जुलाई तक घर घर दस्तक देंगे जनगणना कर्मी। चलिए कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं वेडी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय चल रहा है। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, इस साल मानसून में जो है वो कम बारिश होगी और गर्मी जो है वो बेहाल करेगी। देश भर में भीषण गर्मी के बीच अब मानसून को लेकर भी चिंताजनक संकेत सामने आए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जून से सितंबर 2026 के बीच होने वाला जो मानसून है वो सामान्य से कम रह सकती है बारिश। श्रोतों, मौसम विभाग के महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि इस बार देश में कुल बारिश दीर्घकालिक औसत का सिर्फ 90% रहने की संभावना है। जी बिल्कुल श्रोतों, और जून में दिखेगा असर। श्रोतों, इन राज्यों में बढ़ेगी लू। हाँ जी, मैं बात करना चाहता हूँ मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीट वेव के दिनों की संख्या सामान्य से ज़्यादा जो है वो रह सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। श्रोतों, जून 2026 के लिए भी चेतावनी जो है श्रोतों वो जारी की गई है। विभाग के अनुसार जून महीने में देश भर में औसतन बारिश सामान्य से कम यानी 90% से नीचे रह सकती है और भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जो है वो ज़्यादातर इलाकों में बारिश की कमी देखने को जो है श्रोताओं में मिल सकती है। मानसून अब 7 दिन बाद केरल पहुंचेगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरल तट के 30 से 35 किलोमीटर दूर 5 दिनों से अटका है और अगले दो तीन दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं है। केरल के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक की मानसून आने का अनुमान जो है वो जताया था। ताज़ा अनुमान के मुताबिक अब यह 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा, यानी पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंटर करेगा। श्रोताओं, बहरहाल 7:30 हो गए हैं, आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और गीत संगीत जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आइए लेके चलते हैं आप सभी को अब एक छोटे से अंतराल की ओर और आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए लेके जाते हैं आपको इस अंतराल की ओर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से कर। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आ,
7: तुम भी।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोतो, अब वक्त हो गया है आप सभी से फिलहाल इस गीत की ओर जाने का, हुआ है वक्त। श्रोतो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोता अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। कल भी अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र भरा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों और जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान करीब 80% दर्ज किया गया और इस समय प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना का कार्य चल रहा है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान कुल 69.60% दर्ज किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति जिला के 10 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 69.60% मतदान दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार कुल 4036 पंजीकृत मतदाताओं में से 2809 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मठग्राम पंचायत में सबसे अधिक 76.20% मतदान दर्ज किया, जबकि मालंग में 58% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: उधर कांगड़ा जिला में आज 277 पंचायतों में मतदान करवाया गया, जिसमें करीब 70% मतदान दर्ज किया गया। सोलन जिला में 83.85%, चंबा में 85.21%, कुल्लू में 84.66%, ऊना में 79.67% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवा मतदाता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे।
3: मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए।
4: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो करा। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे आज अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे।
5: प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें हमेशा मत का अधिकार
4: का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र की नींव ऐसी बात पर टिकी है जिसमें प्रजा की सहभागिता हुई, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने पैतृक गांव में आकर इस कार्य को पूरा किया है।
1: इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र की गृह पंचायत मुरहाग मतदान केंद्र में वोट डाला और सभी मतदाताओं से ग्रामीण विकास के लिए योग्य प्रतिनिधियों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कई तरह के षड्यंत्र अपनाकर पंचायत चुनाव को देरी से करवाने का आरोप लगाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विकास खंड के तहत अपने गृह पंचायत के पनौल मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनता के प्रति समर्पित उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिरमौर जिला के सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि नाहन में जिला परिषद के 2 वार्डों और 15 पंचायत समिति के वार्डों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पंचायत समितियों और उसके बाद जिला परिषद की मतगणना होगी।
5: मतगणना केंद्र जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। नाहन में जो हमारा DPRC है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यहाँ नाहन ब्लॉक की जो 15 पंचायत समिति के वार्ड उनकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद हमारे जो जिला परिषद के 2 वार्ड बनकला और त्रिलोकपुर हैं उनकी काउंटिंग होगी। 12 टेबल्स जो है हमने तैयार किए हैं, 12 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। सर्वप्रथम हमारे जो पंचायत समिति वार्ड्स हैं

0: उनकी काउंटिंग होगी, उनके रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद हमारे जिला परिषद के वार्ड पहले बनकला की और फिर त्रिलोकपुर की काउंटिंग की जाएगी। जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ है सुबह 7:30 बजे यहाँ हमारे रिपोर्ट कर देंगे और एक ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक 9 बजे जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
1: उधर कांगड़ा जिला में नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के चुनावों की मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेगटा ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
2: कल यानी कि 31 मई को हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर में भी मतगणना होनी है और मतगणना ईवीएम के माध्यम से होनी है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही में हमारे 18 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे बीडीसी और जिला परिषद, इनकी भी मतगणना होनी है। सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी इम्पोर्टेंस पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव कहा गया है। डबल टायर्ड सिक्योरिटी इसमें रहेगी और साथ में फ्रिस्किंग स्पेशली की जाएगी।
1: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा का प्रदेश विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से गांव में सौहार्द, सहभागिता और सुशासन का वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। वे आज समीरपुर में उनसे मिलने आए दाढ़ी व बीड़ बगेहड़ा के नव निर्वाचित प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा व तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को इसे अन्य पर्यटन स्थलों में मौसम सुहावना हो गया है, जिसका आनंद लेने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। कल भी अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोतो एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। और क्या लिखूं, कैसे लिखूं, अब तो मेरी कलम भी जो है वो शर्माने लगी है। अभी मैं सचिन कपूर आपसे ले लेता हूं श्रोतो इस कार्यक्रम से अलविदा। मिलते हैं कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन में आज सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आप भी
7: तुम भी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
5: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
6: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
5: क्या मतलब?
6: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
5: आप भी
6: तुम भी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर सूर्य घर।
6: सुनो, आपने क्या सोच के मुझसे शादी की थी?
7: सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
6: क्या मतलब?
7: अरे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही तुम्हें देखा मैंने डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो इसी से। सोचने समझे में कोई और भी आके ले जाता तो
6: आ,
7: तुम भी।

इस वक्त आप सभी ने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

धर्मशाला के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।